0: एक नहीं दाता पुस्ते जो पाये नानक सकरमात साहिब उठे जो मिले महला दूजा।
1: इतनी चाकरी जब भुख सुना जाए नानक सेव कांडी है जिसे ती

हर्ता के पारावा आप कराए साक्षी फिर आप कराए माँ इतना गली जंजीर एक

तो से सुन रहे थे सूफिया नकला 103.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी का अमृतसर केंद्र। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ड सर्विस केंद्र की पंजाबी सेवा। सवेर के 6:29 58 सेकंड होने साढ़े अगले

मल्हायो वेंदो आहे। इतफ़ाक़ सां भारत इन्हीअ ॾींहं ते पंहिंजे वध में जदीद हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल INS संशोधक खे पिण साॻे ॾींहं ते कमीशन कयो आहे। हिन मौक़े ते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय नेवी साइंसदाननि, इंजीनियरनि, कम कंदड़ ऐं सभिनी भारतवासियुनि खे वाधायूं ॾिनियूं ऐं चयो त इहा हासिलात मुल्क जे वधंदड़ तकनीकी ऐं सामूंडी क़ुवत खे पधरो थी करे। हुन चयो त आलम जा वधि में वधि वापारी रस्ता सामूंडी रस्तनि खां गुज़रनि था, तंहिंमें वसी आलमी डाटा नेटवर्क पिण समुंड जे अंदर ई आहे। हुन चयो त जदीद आलम में सामूंडी सुरक्षा घणी अहमियत रखे थी। हुन वधीक ध्यानु छिकायो त ख़ासि मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सिस ऐं मुस्कबल में एनर्जी जा ज़रिया, तवानी जा ज़रिया समूंडी खेत्र सां जुड़ियल आहिनि, तंहिं करे मुल्क जी मईशी ऐं हिकमत अमली ताक़त समूंडी खेत्र सां जुड़ियल आहे। प्रधानमंत्री चयो त भारत INS विक्रांत खां वठी करे पंहिंजी क़ुवत टिनि ॿेड़नि ताईं पधरी कई आहे। इहा का महज़ का आम रवाज़ी यात्रा कोन आहे। INS विक्रांत खां वठी करे INS अग्रय, INS दौनागिरी ऐं INS संशोधक खे भारतीय नेवी में शुमार करण भारत जी पाण ते भराइण जी वॾी हासिलात आहे। प्रधानमंत्री दावे सां चयो त भारत बचाव खेत्र में महज़ को ख़रीदार कोन आहे। मुल्क जी फ़ौजी क़ुवत फ़क़ति आलमी मार्केट ते दारोमदार नथी करे पर पाण ते भाण ते दारोमदार थी रखे। भारत हिकु प्रोड्यूसर ऐं मैन्युफैक्चर थियण थो चाहे, छो जो जेके मुल्क मैन्युफैक्चरिंग में अहम रोल अदा कंदा आहिनि से आलमी समत ते अहम रोल अदा कंदा आहिनि। प्रधानमंत्री ध्यानु छिकायो त 40 खां वधीक ॾेही तयार थियल ॿेड़ा भारतीय नेवी में शुमार कया विया आहिनि। तंहिंखां अलावा पनडुबियूं पिणु शुमार कयूं आहिनि गुज़िरियल कुझु सालनि दौरान। हुन चयो त लॻभॻि हर कुझु हफ़्तनि दौरान नेवी हिकु नई क़ुवत खे शुमार करे रही आहे। हिन वक़्तु 45 अहम नेवल प्लेटफॉर्म्स अॾावत तहत आहिनि। समूंडी खेत्र जी अहमियत खे, ख़ासि करे रोज़गार सां वाबस्त अहमियत खे रोशनी आणींदे श्री मोदी चयो त सरकार समूंडी खेत्र खे को फ़क़ति अलॻि सां हुनर करे कोन लेखे रही आहे, पर रोज़गार ऐं मईशीवाद में हिकु अहम खेत्र करे लेखे रही आहे। अधिक जदीद ॿेड़े खे जदीद तादाद में स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ऐं हज़ारे पुर्ज़नि जी ज़रूरत पवंदी आहे, जंहिंसां इंडस्ट्री सप्लाई चेन्स में ज़बरदस्त वजह आहिनि। टिन कमीशन ॿेड़नि में 200 खां वधीक MSMEs पंहिंजो योगदान ॾिनो आहे। प्रधानमंत्री वधीक बयान ॾिनो त वक़्तु अची वियो आहे भारत जे समूंडी खेत्र में अॻिते तरक़ी जे लाइ ऐं सरकार इन ॾिस में ॿेड़नि खे अॾण जे खेत्र में हिकु अहम पॉलिसी ऐलान कई आहे। इन खेत्र खे 70,000 करोड़ रुपियनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। इहो न हिकिड़ो माली पैकेज कोन आहे, पर इहो भारत जी समूंडी ताक़त, ख़ासि करे हुनरी वधाउ जो पैकेज आहे। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश है प्रोग्राम सुन तो खबर कड़ी।

सुपर तो खबर कड़ी सामी प्रोग्राम खड़ी कर अवा की किस्मत में एक दफो बीहर खा हाजिर थे ऑपरेशन में हल्द बहरान सबब दुनिया भर जो घड़ी इकतसादत मुतासर थी पर अस पाड़ेसी मुल्क में हालतू तमाम ही बदतरीन जितने कि अस में आवाम की जिंदगी तेखा अलावा महंगाई से वाबस्ता हालतू तमाम

घणी घणी सुधरियल ऐं बहितर आहिनि। ताज़ी सिंध एक्सप्रेस में हिकड़ो एडिटोरियल शायदि आहे जंहिंजो टाइटल आहे पेट्रोल अघनि में घटिताई सां छा महांगाई घटिजी वेंदी। तंहिंमें लिखियलु आहे एडिटोरियल में लिखियलु आहे की पाकिस्तान में ताज़ी पेट्रोल जॻह खे घटि करण जो फ़ैसिलो त कयो आहे पर जेकॾहिं ॾिठो वञे त जेके महांगाई सां वाबस्तु आहे आम रवाज़ी रोज़ वाहिपे जी शयुनि जा अघु जीअं जो तीअं मुराद आहिनि एतिरे क़दुरु जो ट्रांसपोर्ट जा अघु पिण जीअं जो तीअं आहिनि। मुल्क में अॼु ॾींहुं ताईं अवाम महांगो ऑटो ख़रीद करण ते मजबूर आहे पर उहे भले अघु घटिया आहिनि पर अॼु बि भाड़ा साॻई महांगा आहिनि तिन में को फ़र्क़ु कोन आयो आहे। नतीजनि अवाम लाइ जाकी जेका महांगाई जिते हुई सां उते उते मौजूदु आहे। मसइलो इहो आहे त महांगाई रुगो पेट्रोल जी क़ीमत सां लाॻापियल न आहे पर जेसीं मुल्क जा इंतज़ामी इदारा फाइल ऐं असरातो किरदार नथा कनि तेसीं कंहिं बि हिकु शइ जी क़ीमत घटिजण जो को असर न पवंदो ऐं न ई को घटिजंदी। पेट्रोल जी क़ीमत महज़ कुझु रुपया घटिजण खां पोइ बि अॼु बि अवाम अटो खंडु भाॼियूं ऐं ज़रूरी शयूं साॻे पुराणनि अघनि ते यानी महांगे अघनि ते ख़रीद करण लाइ मजबूर आहे। अहिड़ी सूरत में आम शहरी लाइ ज़िंदगी जे ख़र्चनि में का बि रिआयत महसूस कोन थी थिए। शहरी ट्रांसपोर्ट जो निज़ाम पिण हिन तब्दीली खां मुतासिर कोन थियो आहे। बस भाड़ा रिक्शा ऐं ॿी ट्रांसपोर्ट जा अघु जीअं जो तीअं आहिनि पोइ भले पेट्रोल सस्तो थिए या न थिए ट्रांसपोर्टरनि पंहिंजे भाड़नि में घटिताई कोन आंदी आहे जंहिं करे आम शहरी हलाक थियल ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। पासन एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल ॿुधियो आहे जंहिंजो टाइटल हो पेट्रोल अघनि में घटिताई सां छा महांगाई घटिजी वेंदी।

அரசியல் கட்சியின் நோஜான் டேசம் விவசாய எடிட்டர் ஷாதா சந்த் எக்ஸ்பிரஸ் டைட்டில் ஹை ஜபரே பூர்வ கந்தர் சாஸ் லக்கபார் இதில் கேம் முல்க ஜி ضرورتن کے پورو کرن لائے حکومت جی ذمہ داری ہے چھو جو عوام پنجے ووٹ ذریعے حکومت کے چونندی ہے پر ہتے مسئلن کے دور کرنے کے بدرا حکومت مسئلن کے انا ودی کا جنم دینی ویندی ہے عوام ساگین مسئلن میں پوری در پوری فاتلتی رہے پاکستان میں بھی لکھیں بار اسکولن کھا باہر ہیں لکھیں بار جبرو پورے تھا کن جہاں حکومت جی ذمہ داری ہے تو بارن کے اسکول تائیں رسائی میسر کرائے टैंगमडी खे हिकिड़ो सुठो शहरी बणाए पर हिते उबतर पियो थिए मुल्क में वधंदड़ बेरोज़गारी जिन मसइलनि जो सबबु बणी आहे सभु मसइला सरकार लाइ पिणु ख़तरो थी सघंदा आहिनि ताज़ो रिपोर्ट जेका पेश थी आहे सां हलाक कंदड़ आहे रिपोर्ट में ॿुधायो आहे त मुल्क में 86 लख ॿारनि खां ज़बरदस्ती पोरियो वरितो पियो वञे पंजाब में सभ खां वधीक 60 लख ॿार सिंध में 16 लख ॿार केपी के परगणे में 7,45,000 ॿार ज़बरदस्ती पोरियो में फाथल आहिनि बलूचिस्तान में 2,01,532 ॿार 852 ॿार इस्लामाबाद में 15,000 ॿार मजबूरन ज़बरदस्ती पोरियो करे रहिया आहिनि इंसानी हक़नि जे कमीशन बाबति पैदा पधर कयल अंग अखर तमामु हलाक कंदड़ आहिनि तंहिं खां पतो थो पए की लखे ॿारनि जी ज़िंदगी कहिड़ी बदतरीन आहे जेतोणीक इहे सभई ॿार स्कूल में तइलीम वठंदड़ हुअणु खपंदा हुआ अरबी सिंध जे समाज में मुल्क जे घणनि हिसनि में तव्हांखे नंढा नंढा ॿार दुकाननि ते मैकेनिक जो कमु कंदे या ॿियो कोई पोरियो कंदे मिलंदा इन लाइ ज़रूरी आहे त सरकार हिन खे तइलीम मुयसर कराए जंहिं इहे मुल्क जो शान थी सघनि ऐं मुल्क जे कमु अची सघनि। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शागिर्द एडिटोरियल ॿुधी रहिया जंहिंजो टाइटल हो जबरे पोरियो कंदड़ 86 लख ॿार।

पेशेंट खास खबरों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चवे त भारत आलम की तेज रफ्तार से उभरदड़ इक्तसादियत है एक भरोसेमंद आलमी ताकत थी कर उभरी रो है। स्विट्जरलैंड गाल में शफी वाधारो थे अमेरिका सठ डी लाइ ईरान के तेल रवानगी में रियायत डी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टेमर इस्तीफा दियण जो ऐलान किया है जो लेबर पार्टी में बुरहान हली रो है। नए चूंडल एमपी एंडी बुरहान संदस सुबायत थे उम्मीद है। कतार में 13 मानू मारजी तें में 12 भारतीय रास लैफिन इंडस्ट्रियल सिटी में एक धमाको थो। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया के बुड़ी ग्रुप जे रांद में बात डी जी अमेरिका के हैरिंगटन में थी इन तरह 2 राउंड में पैं जाए सलामत रखी है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ साढे 6 बजे। मोकल सनाई घरु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत के 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं भी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिकार, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने भजन सुमित कुमार जी के स्वरों में। सितार पर संगत दे रहे थे अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप महाराणा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। सुबह की खूबसूरत बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आपका दिन खुशियों, उत्साह और नई उम्मीदों से भरा होगा। आज के अगले 30 मिनट हम सुनेंगे बॉलीवुड की कुछ शानदार गीत, जो आपकी सुबह को और भी सुरीला बना देंगे।

वाह क्या बात है, सुबह के समय ऐसा मधुर गीत मन को एक अलग ही ताजगी दे जाता है। दरअसल जीवन में एक सुहाने सफर की तरह ही होता है, हर दिन हमें कुछ नया सीखने आगे बढ़ने का मौका देता रहता है। आइए अब सुनते हैं अगला एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म खामोशी से। आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति जी की। दोस्तों, अगर मन में आत्मविश्वास हो तो हर मुश्किल आसान लगने लग जाती है। सुबह की सकारात्मक शुरुआत पूरे दिन का मूड तय कर देती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आइए अब सुनते हैं एक और जोशीला और प्रेरणादायक गीत।

वाह, घूमने फिरने और नई मंजिलें तलाशने का जज्बा इस गीत में साफ झलक रहा था। दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

दोस्तों, सुबह की ठंडी हवाओं में अगर किसी की याद दस्तक दे तो समझ लीजिए दिल फिर वही मीठा सा शोर कर रहा है। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

Thank you.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर।

0: ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
0: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, रोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मलबरी का ही होता है, तो मलबरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @

0: AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केन्द्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी

0: वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमरीका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टारमर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडम्बू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, हम सुनील वर्मा, हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said, the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said, the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं भी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है. स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया. देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं.
2: Mr. Modi said, nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है. उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं. यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई aspiration ki prerana hai.
2: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
4: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mamuti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and creative industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
5: Find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
6: I designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
7: So, 10-12 years ago, I was taught by my
8: mother. I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
9: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor and do some research in his

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।

0: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकदम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्त तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममोती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरूआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मुस्कुरा अवार्ड गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, आवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत और सनत, अदविया, अनुभव तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैंने आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, रोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मलोरी का ही होता है, तो मलोरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुरुदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं।

0: प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन NAFED के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में NAFED के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह NAFED के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में NAFED अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। NAFED का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुस को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवीत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफेन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारतखाना इस हादसे से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रासलफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन

0: काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी टाइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के कोलंबिया में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हमारा इंकलाब और हिन्दुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉ एजय शंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अमित डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, यह खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रही हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज हम सुनेंगे राग मियां के तोड़ी में सितार वादन। कलाकार हैं अनुजा झा। तबले पर संगत कर रहे हैं अब्दुल रहमान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे अनुजा झा से सितार वादन, तबले पर संगत कर रहे थे अब्दुल रहमान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नए विषयों पर नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा उन तक पहुंचाते रहते हैं। आज जो विषय हमने रखा है आप लोगों के लिए वो विज्ञान और वैज्ञानिक समझ के दृष्टिकोण के विकास को लेकर के है, खास करके जो विज्ञान का है, आधुनिक अनुसंधान का है, उसका समाज पे प्रभाव, समाज की समस्याओं का वैज्ञानिक अनुसंधान से और विषयों से जुड़ाव से भी जोड़ के है। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री सौरभ सेन। श्री सौरभ सेन जी एक प्रमुख मीडिया पेशेवर हैं और उन्होंने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख के रूप में कार्य किया हुआ है। इनके समय में और इनके नेतृत्व में हमारे देश का पहला 24 घंटे का इंटरनेट आधारित साइंस और टेक्नोलॉजी OTT चैनल इंडिया साइंस की शुरुआत की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और विज्ञान के विकास को जनता तक पहुंचाना रहा। इसके अलावा उन्होंने कई सरकारी पहलों में, अन्य संस्थाओं में एक वरिष्ठ मीडिया सलाहकार के रूप में और एक नेतृत्व के रूप में भी अपने मार्गदर्शन दिए हैं। श्री सौरभ सेन जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार दिलीप जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: विज्ञान के अनुसंधान का फायदा तभी है कि जब उसकी पहुंच समाज तक पहुंचे और उसके जो प्रोडक्ट अनुसंधान के द्वारा मिलते हैं उनका उपयोग करना भी लोग सही सही समझ सके। हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या रही है अंधविश्वास के प्रति और उसकी चुनौती को लेकर के। आप इस क्षेत्र में कई सालों से हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए एक आम लोगों के बीच में ये जो अंधविश्वास है या गलत सोच है वो किस तरह कठिन रहता है?
3: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समय बदलता जा रहा है। हम आज 2026 में खड़े हैं जब हम कोविड जैसे महामारी को भी पार कर चुके हैं और ये हरेक पड़ाव जो है इसने हमारे देश के युवा को और सच बोला जाए तो स्कूल के बच्चों को भी एक नई जागरूकता दी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज की तारीख में जो बच्चा रास्ते के किनारे बैठ के सब्जी बेचता है वो भी आज डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसके हाथ में भी आज स्मार्टफोन है। यानी कि मान लीजिए हमारे संविधान में जब आर्टिकल 51AH लिखा गया था कि अंधविश्वास को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक जागरूकता की बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे देश में, तब इस बात की कोई इमेजिनेशन भी नहीं थी कि डिजिटल एज आएगा या स्मार्टफोन आएगा या कंप्यूटर आएगा। आज तकनीक, विज्ञान, ये सब कुछ को डिजिटल मीडिया ने बहुत कुछ संभावनाओं के साथ हमारे जनता के सामने रखा है। इसलिए जिस बच्चे को स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता

0: वो भी आज एक वैज्ञानिक के वीडियो को यूट्यूब में देख के अपने वैज्ञानिक सोच को बदल सकता है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो अंधविश्वास का जो एक आरोप लगता आया है भारतवर्ष पे, खास करके पश्चिम के देशों के द्वारा, वो आज बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है।
1: भारत की मुख्यधारा के मीडिया में विज्ञान को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। हालांकि आकाशवाणी जैसी संस्थाएं अपने डेडिकेटेड साइंस प्रोग्राम के तहत विज्ञान संचार के अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है। जब आप OTT चैनल के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आप किस तरह से आम भाषा में एक शोध रिसर्च के तहत विज्ञान की सत्यता को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे?
0: ये एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा। हमने जब साइंस चैनल के कंटेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो हमने एक चीज को रियलाइज किया कि जब हम मान लीजिए 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उसकी जो पेनिट्रेशन होती है, यानी कि उसकी जो व्यूअरशिप होती है, वो सबसे पहले वो लिमिटेड होती है। दूसरी बात, जब हम उसके एनालिटिक्स के अंदर झांकते थे, तो पता चलता था कि बिना अंदर झांके पता चला, मान लीजिए 10,000 लोगों ने उस वीडियो को व्यू किया है, लेकिन जब हम उस वीडियो के एनालिटिक्स के अंदरूनी हिस्से में पहुंच के उसका ज्यादा विश्लेषण करना चाहते थे, तो पता चलता था कि उन 10,000 लोगों में से 9,000 लोगों ने केवल 10 सेकंड ही उस वीडियो को देखा। तो यानी कि 9,000 लोगों ने उस वीडियो को देखना शुरू तो किया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया और वो चले गए, और बाकी 1,000 लोगों ने ही उस वीडियो को देखा। यानी कि ना तो उस वीडियो के बनाने का जो कॉस्ट था, उस पे जो खर्चा हुआ, वो भी उठकर सामने नहीं आया, तो मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, और उस वीडियो का जो पर्पस था, यानी कि लोगों तक उस सच को पहुंचाने का, वो भी हमारा सिद्ध पूरी तरह से नहीं हुआ। हमने इसी कारणवश हमने एक वहां पे मीटिंग की और अपनी टीम को ये कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं जो हमारे ऑडियंस के मनों में घर कर जाते हैं। जैसे एक टॉपिक मेरे को बहुत खास करके याद है, उन दिनों में शायद वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था किसी कारण, तो स्पिन बोलिंग और पेस बोलिंग को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। तो हमने अपने एक कोलीग से ये कहा कि भाई एक काम करो, आप एक मिनट का वीडियो बनाओ, सिर्फ एक मिनट का, और एक मिनट मतलब सिर्फ 60 सेकंड, और उस 60 सेकंड में आप सिर्फ ये दर्शाओ कि जो स्पिन बोलिंग होती है वो फिजिक्स के नजारे से देखा जाए तो वो स्पिन क्यों होती है, या जो पेस बोलिंग होती है तो इन स्विंगर की फिजिक्स क्या है, वो बॉल इन स्विंग हवा के दबाव कहां से मिलने पे इन स्विंग होती है, हवा के दबाव किस तरह से मिलने से आउट स्विंग होती है, और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक मिनट का वीडियो 10,00,000 लोगों ने देखा और पूरा एक मिनट देखा। तो इससे साबित क्या होता है कि साइंस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ साइंस को देखना काफी नहीं है, ये ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझ के उसके कम्युनिकेशन को डिजाइन करना भी उतना ही महत्व रखता है।
1: आपका अनुभव काफी बड़ा है और आपने जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, भारत चूंकि तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अभियान भी रहा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, आप उसमें भी अपने अनुभव साझा किए हैं, उसके बारे में बताइए।
0: जी, एक छोटा सा मौका मुझे मिला था जब अर्थ साइंसेस मंत्रालय के द्वारा ये अभियान छेड़ा गया था, तो मेरे लिए पुरी का समुद्र तट बताया गया था कि मेरे को वहां जाना पड़ेगा। हम गए वहां पे और वहां पे हमने थोड़ी सी ये जागरूकता फैलाई कि वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने शायद सारे पूरे भारतवर्ष का तट जो है वो देखा नहीं होगा, उनके लिए पुरी का समुद्र तट ही एकमात्र तट था जिसके बारे में वो वाकिफ थे। और जब उनको वो कहानी सुनाई गई कि किस वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है, तो उनके आंखों में जो हमने रोमांच देखा, जो एक्साइटमेंट देखा, और उसके बाद जब वो अभियान हमने चालू किया, तो उसमें बच्चों का जो रवैया रहा, उनका जो एक रोल रहा समुद्र तट को साफ करने का, उसका एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कोई भारत का छात्र या युवा वर्ग में जोश तभी आ जाएगा जब उसमें जागरूकता आएगी। और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि आज की दुनिया में अगर रील्स और शॉर्ट्स ज्यादा चलती है, तो बड़े बड़े वीडियो बना के हम क्या हासिल कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप चूंकि मीडिया के टूल बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, आपने शॉर्ट रील्स की भी बात की, सोशल मीडिया भी है, बहुत सारे अलग अलग माध्यम अपनाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भी और इंडिविजुअल के द्वारा भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो सार्वभौमिक समस्या, वैश्विक समस्या है हमारे देश के साथ, वह है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की। तो इन गंभीर विषयों पर जन जागरूकता के लिए, उनकी सहभागिता के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावी मीडिया टूल कौन सा हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझना चाहिए, एक मिनट के लिए आप मीडिया को भूल जाइए, आप सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप देखेंगे, तो इंसान तभी डरता है जब उसके अपने पे आती है। कहीं एक जगह पे

0: दो फेफड़े लगा दिए गए थे रस्ते के ऊपर, और वही फेफड़ा दिल्ली के किसी शंकर रोड में या कहीं पे दो फेफड़े लगा दिए गए थे एक साइन बोर्ड के ऊपर, और वो फेफड़े नॉर्मल एटमोस्फेरिक पोल्यूशन पर्यावरण की वजह से वो काले होते गए, और रोज उसी रस्ते से लोग ऑफिस जाते थे और ऑफिस से वापस आते थे। एक हफ्ते बाद उनको दिखने लगा यार ये फेफड़े काले पड़ने लग गए हैं, 10 दिन बाद उनको डर लगने लगा, 15 दिन बाद वो आतंकित हो गए। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम अब कुछ ऐसा हो गया है जिसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से एक इंसान को एक चीज का अनुभव नहीं दे पाते हैं तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं होता है। सरकार के प्रति मेरा भी रिक्वेस्ट एक ही है कि जब साइंस कम्युनिकेशन आप करेंगे उसको बोरिंग मत कीजिएगा। साइंस कम्युनिकेशन को हमें एक बहुत ही एक्सपीरियंशियल तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करना चाहिए जिससे ऑडियंस को लगे कि पर्यावरण अगर दूषित होता है तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान मेरा है, तब जाके वो खुद उसमें अपना रोल प्ले करेगा।
1: AI के इस दौर में आप विज्ञान संचार का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि AI के साथ एथिक्स की बात होती है, साथ ही कंटेंट के जो फैक्ट्स है उसकी एक्यूरेसी की भी बात होती है।
0: देखिए करके AI एक ऐसा नया तकनीक है जिसकी कल्पना भी शायद हमने आज से 3-4 साल पहले नहीं की होगी, इसलिए इसने मनुष्य जाति की जो सोच है उसको पलट के रख दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो वो उदाहरण इसलिए है क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा AI के खिलाफ जो आर्गुमेंट समाज में चल रहा है वो है AI का मिसयूज, और वो मिसयूज कुछ इस तरह से है कि आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट मिल गया तो आपने सीढ़ी चढ़ना बंद कर दिया, आपको कैलकुलेटर मिल गया तो आपने अपने गणित को भूलना शुरू कर दिया,
1: एप्लीकेशन बंद कर दिया।
0: तो इससे क्या होगा कि आप AI को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि AI आपके काम को एफिशिएंसी देने के लिए बनाता है। जो काम आप पहले 10 घंटे में करते थे वो काम आज आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
1: विज्ञान संचारक की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक कार्य है, एक नॉलेज है, और क्या ये एक जॉब है? तो युवाओं के लिए अगर इसको करियर के रूप में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि विज्ञान संचारक का कोई भविष्य है?
0: विज्ञान संचार, साइंस कम्युनिकेशन, ये जो 2 शब्द है इसमें एक है विज्ञान और एक है संचार। अब अगर विज्ञान की जो मात्रा है 50% होती है तो उसमें संचार की मात्रा भी 50% होना अनिवार्य है, और उसकी एक वजह है। मान लीजिए आप विज्ञान को हर इंसान के मन तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक वैज्ञानिक को नहीं आती है। एक वैज्ञानिक को विज्ञान के फैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है, फिर उसको 140 करोड़ की आबादी के एक देश में जब हमें पहुंचाना होता है वो काम एक वैज्ञानिक के लिए करना असंभव है। वहां पे एक जर्नलिस्ट या कम्युनिकेटर की जरूरत होती है। तो एक वैज्ञानिक और एक कम्युनिकेटर का जब तक तालमेल पूरी तरह से ठीक से नहीं होता है तो साइंस कम्युनिकेशन बेसुरा बना रहेगा।
1: निश्चित रूप से साइंस कम्युनिकेशन का इफेक्टिव वे सभी लोगों के लिए उनकी भाषाओं में करना बहुत जरूरी है, और करना ही नहीं करते रहना भी जरूरी है। आकाशवाणी इस कार्य में आगे रहा है, डेडिकेटेड साइंस सेल्स विभिन्न स्टेशनों में है, और हिंदुस्तान भर में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें विभिन्न बोलियों में विज्ञान विषयों के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता रहा है। आप कई साल पहले भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, तो आप आकाशवाणी प्रसारण को भविष्य में किस तरह का स्वरूप की कल्पना करते हैं, कैसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए?
0: देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे को याद है करीब 30-35 साल पहले मैंने कुछ सालों के लिए युवानी के लिए थोड़े प्रोग्राम्स बनाए थे, कार्यक्रम बनाए थे। आज बहुत ही मेरे लिए एक इमोशनल वक्त है इस आकाशवाणी भवन में दोबारा अंदर आने का। ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन एक चीज हमें समझना होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके पास रेडियो उपलब्ध नहीं है, ये हमें मान लेना होगा। उनके पास जो यंत्र है वो है फोन, लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप की पेनिट्रेशन शायद 10-15% नहीं होती है, 85-90% स्मार्टफोन की होती है। तो मेरे को आकाशवाणी के ऊपर के जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी दरखास्त इतनी सी है एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कि आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का जो ऑडियंस है, उनका कॉन्सेप्ट है कंटेंट ऑन डिमांड। वो ये नहीं सुनना चाहता कि ये कार्यक्रम 3 बजे प्रसारित होगा या ये कंटेंट 7 बजे प्रसारित होगा। आज का युवा पीढ़ी, आज का ऑडियंस आपको ये कहता है कि मुझे जब सुविधा होगी आप अब मुझे कंटेंट दे सकते हैं, मुझे ये कंटेंट 8 बजे चाहिए, क्या मैं 8 बजे आपका 3 बजे वाला कार्यक्रम सुन सकता हूं? तो अगर आकाशवाणी ये सारे कार्यक्रम एज प्रोग्राम लिंक्स अगर उपलब्ध करा सके तो

0: मेरा ये मानना है और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आपकी जो ऑडियंस है वो काफी मल्टीपल्स बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें इतना सब्सटेंस होता है, इसमें इतना नॉलेज होता है जो और कोई प्राइवेट चैनल शायद उपलब्ध नहीं करा पाता है।
1: निश्चित रूप से इस दिशा में आकाशवाणी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बदलती हुई तकनीक के साथ साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं और बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए अब आकाशवाणी के सभी चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप पे उपलब्ध है। अगर उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाए तो हिंदुस्तान के सारे चैनल वहाँ की रीजनल भाषाओं में भी सुने जा सकते हैं। इसके साथ ही जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, चाहे विज्ञान के हों, स्वास्थ्य के हों, चाहे कृषि के हों, संगीत के हों, खेल के हों, उनके लिए एक डेडिकेटेड लिंक जनरेट किया जाता है जो यूट्यूब के द्वारा उन्हें उपलब्ध हो जाता है ऑन डिमांड। बस उन्हें जाके आकाशवाणी सर्फ करना है उस स्टेशन के आकाशवाणी केंद्रीय कार्यक्रमों को जहाँ पे की उनको सुनना है कार्यक्रम जिस भाषा में। अब हमारे चैनल DRM पे भी उपलब्ध है और निश्चित ही कुछ समय के बाद हम लोग विजुअल रेडियो की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से श्रोताओं को उनकी इच्छा उनकी चाहत के अनुसार हमारे कार्यक्रम उस ढंग से उपलब्ध रहेंगे। श्री सौरभ सेन जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, अपने अनुभव शेयर किए, इन सब अनुभवों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

समीन अदर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

नमस्कार 35 मिनट पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नमस्कार 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा। अगले प्रोग्राम में आज के फनकार हैं पिनाज मसानी और जितेंद्र सिंह, पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। कलाम है रिफत सरोज, फयाज जयपुरी, हसरत मोहानी और जिगर मुरादाबादी का। हुस्न गजल प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05 और सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे पूर्वोत्तर डायरी। सुबह 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में चंद नगमे फिल्मी मेरी पसंद के। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर मोहतरमा जैनब उस्मानी की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे मोहब्बत उसे भी थी। दिन में 12 बजे खबरें नशे की जाए

सुनेंगे और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारीख सास प्रोग्राम आप सुनेंगे। आज का मौजू है राबिया बसरी। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशों नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन। पेश कर रही हैं अनुराधा पौड़वाल और हमनवा।

0: सुन रहे प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे भजन। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: 23 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। 1980 में आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई। 1995 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव पारित किया। 2008 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्रो चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। 2008 में आज ही के दिन टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोनल और उसकी सहायक कंपनियों सहित 270 करोड़ डॉलर का अधिग्रहण किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। वे सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे जिन्हें हिंदी फिल्मों के मशहूर गाने जैसे रेलगाड़ी फिल्म आशीर्वाद के लिए याद किया जाता है। आपकी मुख्य फिल्में साहेब बेबी और गुलाम, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, सत्यजीत राय की सोनार किल्ला आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा गीत रेलगाड़ी।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक।
1: आज जयंती है रहमान की। उनका जन्म 23 जून 1921 को हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिनका करियर 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक रहा। वे गुरुदत्त की टीम का अभिन्न हिस्सा थे और उन्हें प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब बेबी और गुलाम, दिल ने फिर याद किया, छोटी बहन और वक्त जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया छोटी बहन फिल्म का ये गीत।

0: आर पटेल का। उनका जन्म 23 जून 1942 को पंढरपुर में हुआ है। वे भारत के एक मराठी भाषा के थिएटर और फिल्म निर्देशक हैं। 1973 में उनके द्वारा निर्देशित विनय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक क्लासिक माना जाता है। वे मराठी सिनेमा में क्लासिक फिल्मों के निर्माता हैं, जैसे समना, जैत रे जैत, उम्बरथा, सिंहासन। उनकी कुछ अन्य फिल्मों में मुक्ता, एक होता विदूषक और मुसाफिर शामिल है। उनकी सबसे प्रशंसित फिल्म है 1999 की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने अपनी मराठी फिल्म मुक्ता के लिए 1995 में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। आज जन्मदिन है राज बब्बर का। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के छात्र रहे हैं। नई दिल्ली में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद वे बॉम्बे चले गए और 1970 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक रोल से उन्हें काफी चर्चा मिली। इसके बाद वे बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का अहम हिस्सा बन गए। दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ निकाह और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज में नजर आए। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी सफलता हासिल की। आपकी मुख्य फिल्म में आप तो ऐसे ना थे, अगर तुम ना होते, इंसानियत के दुश्मन, आंखें आदि हैं। आइए नजर डालते हैं उनके कुछ गीतों और उनके संवाद पर। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज अब नए हॉर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुजश्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खाद के फरोग और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया। जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इकतसादी सरगर्मियों को तकवियत मिली है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आलातरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म एवार्ड्स

करेंगी। इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बादअज़मर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूटी, फिल्मी गुलुकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत साल 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूर अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुताबिक शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 हुक्काम को मुअत्तल कर दिया है। मजकूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आब नए हुर्मुस को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारिजा वांग ही के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहमत कायम करने में मदद मिलेगी। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तरफैन ने बाहमी ताल्लुकात के हवाले से हालिया हालात और वाकयात का जायजा लिया और ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने की समत पेशरफ्त का नोटिस लिया। साल 2020 में गलवान वादी में जानलेवा झड़पों और इसके बाद 4 साल तक जारी रहने वाली फौजी महाज आराई के तनाजुर में ताल्लुकात में गिरावट के बाद गुज़श्ता 1 साल से ज्यादा के अरसे में भारत और चीन ने अपने ताल्लुकात फिर से कायम करने के लिए कई इकदामात किए हैं। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलूकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने इस हादसे में

0: अर्जेंटीना ने 32 टीमों के राउंड में अपनी जगह बना ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह मेसी फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत अख़बार ज़र्रे पर मबनी शम्मे फरोज़ा।
2: ज़खीरा अंदोज़ी मुआशियात की एक इस्तिलाह है, जिसका मतलब यह है कि कोई ताजिर अशियाए खुर्दनी में से कोई चीज जखीरा करके रख दे इस नीयत से कि जब मार्केट से वो चीज खत्म हो जाएगी और सिर्फ उसके पास रहेगी तो उसे महंगे दामों फरोख्त करेगा। कभी इस तरह भी होता है कि एक ताजिर माल पहुंचाने वालों से गठजोड़ कर लेता है कि कोई जिनसे तिजारत सिर्फ उसे पहुंचाई जाए ताकि मार्केट में वो चीज किसी और के पास ना हो। इस सूरत में उसके लिए मौका होता है कि उस चीज को मनमानी गरा कीमत पर हाजतमंदों को बेचे। ये अमल सरासर नाइंसाफी और इस्तेहसाल पर मबनी है। यूं तो बड़े बड़े कारोबारों में तिजारती अशिया को जखीरा करके रखने का रिवाज आम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि थोक फरोशी करने वाले बड़े बड़े ताजिरों के लिए बड़ी मकदार या तादाद में तिजारती अजनास को खरीद कर या पैदा करके अपने गोदामों में स्टोर करना जरूरी होता है। इस तरह की जखीरा अंदोजी को अंग्रेजी में स्टोरेज कहा जाता है और इसका मकसद अजनास तिजारत की मसनूई किल्लत पैदा करके दाम बढ़ाना और मुनाफा खोरी करना नहीं होता। इस तरह बाजार में जिस जिन्स की फरावानी है और लोगों को किसी तरह की तंगी और किल्लत का सामना नहीं है, ऐसी हालत में जखीरा अंदोजी जायज है। इसके बरक्स ऐसी जखीरा अंदोजी जिससे लोगों को तकलीफ और परेशानी हो सरासर नाजायज है। दरअसल मुनाफाखोरी की हवस जखीरा अंदोजी की बुनियादी मुहर्रिक है। जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी ऐसी लानत है जिसके बायस महंगाई में इजाफा होता है। इसलिए इस्लाम जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की भरपूर मजम्मत करता है। कारोबारी नुक्ते नजर से देखा जाए तो ताजिरों के लिए मुनाफा कमाने के दो ही रास्ते हैं। एक ये कि वो अशियाए तिजारत मार्केट में लाकर कुछ मुनाफे पर फौरन फरोख्त कर दें या फिर दूसरा माल लाएं। दूसरा ये कि ताजिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की गरज से अशियाए सर्फ का पहले जखीरा कर लें और फिर जब उनकी जरूरत इंतहा को पहुंच जाए तो लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए गरा कीमत पर उन्हें फरोख्त करें। अशियाए जरूरत को बाजार में लाने से रोक लेना और कीमतों में बेतहाशा इजाफे का इंतजार करना और फिर महंगी कीमत पर फरोख्त करना एक समाज और इंसानियत मुखालिफ फेल है। जखीरा अंदोजी करने वाला ताजिर दरअसल हवस, संदिली, बेरहमी और जुल्म बर्बरियत के मरज में मुब्तिला होता है। उसे अपने सिवा किसी की फिक्र नहीं होती, लिहाजा अपनी तस्कीन के खातिर वो मजबूर लोगों का मुआशी इस्तेहसाल करता है और उन्हें बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करता। आज की ताजिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के नापाक जज्बे के तहत न सिर्फ उन अशिया की

0: غزل کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت ہے پورووتر ڈائری.
1: اتر پورو ادبھت, رومانچک اور منوہاری, اس کی چھٹا کو سمیٹتی ریڈیو ڈائری جس کے پنے کھلتے ہیں ہر رویوار شام 5:30 بجے گولڈ پر. پورووتر ڈائری.
2: سبھی شروتاؤں کو نمسکار. پورووتر ڈائری کے اس نئے انک میں آپ سبھی کا سواگت ہے. ہر رویوار شام 5:30 بجے اس کارکرم میں ہم ملتے ہیں اور پورووتر راجیوں کی جھلک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آج پھر اس کارکرم میں ہم پورووتر راجیوں کی رنگا رنگ سنسکرتی سے آپ کو پریچت کروانے کے لیے ہم اپستھت ہیں. آپ کے ساتھ میں ہوں کمل کمار پرجاپتی. پورووتر ڈائری. श्रोताओं, इस बार भी हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों की कहानी से और हम इन दिनों पूर्वोत्तर भारत के उन विभूतियों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया और 2026 में उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया. तो आज कहानी सुनते हैं जोगेश दुरे की. जोगेश दुरे ने पूर्वोत्तर भारत में रेशम को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया और उन्हें खेती और सिल्क हेरिटेज के क्षेत्र में 2026 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया. तो आइए हमारे सहयोगी उत्पल और निशा द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को आपको सुनवाते हैं.
3: दशकों से डॉक्टर जोगेश दुरे असम की अनमोल रेशम परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. कृषि और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है. पद्मश्री मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर जोगेश दुरे ने कहा कि यह सम्मान असम के मूगा और एरी रेशम को दुनिया भर में पहचान दिलाने तथा एरी रेशम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के उनके वर्षों के प्रयासों की सराहना है.
4: 33 इयर्स मेरा ये रेशम डिपार्टमेंट में काम किया है. मेरा लक्ष्य था कि हमारा जो असम का मुगा का साथ एरी को भी पूरा ये विश्व में फोकस में लाने के लिए हम 11 साल हम डायरेक्टर का रूप से हम सर्विस किया था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कोकराझार में. इसमें हम एरी को लेके ही हम ये बोडोलैंड सिल्क पार्क विश्व में कहीं पे नहीं है, सिर्फ एरी को लेके ही हम ये कोकराझार में ये सिल्क पार्क हम एस्टेब्लिश किया है.
3: डॉक्टर दुरे एक सम्मानित रेशम विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रशासक हैं. उन्होंने अपने पूरे करियर में खास तौर पर एरी और मूंगा रेशम के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए काम किया. ये दोनों रेशम असम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं. शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से उन्होंने किसानों और कारीगरों को बेहतर तकनीक अपनाने में मदद की, साथ ही रेशम उत्पादन की पारंपरिक विधियों को भी सुरक्षित रखा. उनके प्रयासों से असम और पूर्व उत्तर क्षेत्र में रेशम उद्योग से जुड़े हजारों लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा हुए. उन्होंने कोकराझार में बोडोलैंड सिल्क पार्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असम की पारंपरिक रेशम किस्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार काम किया. पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का समन्वय करके

0: डॉक्टर देओरी ने रेशम क्षेत्र को मजबूत बनाया और असम की समृद्ध वस्त्र विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निशा साहू।
1: बारह जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और देश भर की तरह त्रिपुरा में भी इस दिशा में बहुत से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने हमें त्रिपुरा में आयोजित इस दिवस के अवसर पर हुई गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य भर में बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह त्रिपुरा में भी इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना था। बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अगरतला के निकट जिरानिया में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग TCPCR द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान बाल श्रम और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, जो आज भी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। वक्ताओं ने बताया कि ये सामाजिक बुराइयां विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा, आत्मविकास और बेहतर भविष्य के अवसरों से वंचित कर देती है। गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण कई बार परिवार ऐसे निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं जिनका बच्चों के विकास और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम में कहा गया कि बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बच्चों का समय पढ़ाई, खेलकूद और जीवन की मजबूत नींव तैयार करने में लगना चाहिए, न कि मजदूरी करने में। सभी ने परिवारों, समुदायों, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिलकर बाल श्रम और बाल विवाह रोकने की अपील की। त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जयंती देव वर्मा ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास के अधिकारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न संरक्षण तंत्रों की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा आयोग पूरे वर्ष बाल शोषण, बाल तस्करी, बाल विवाह और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों पर भी काम करता है। साथ ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आयोग नियमित रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है, ताकि सरकारी योजनाओं और बाल संरक्षण सेवाओं का लाभ जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। TCPCR के सदस्य सचिव माधव पॉल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और सुरक्षित वातावरण के निर्माण के लिए लगातार जागरूकता बेहद जरूरी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हर बच्चे को बिना किसी शोषण या मजदूरी के बोझ के सीखने, बढ़ने और सपने देखने का अधिकार है। ये दिन पूरे वर्ष सतर्क रहने और सामूहिक प्रयास जारी रखने का भी संदेश देता है। जिरानिया में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में एक बार फिर ये स्पष्ट किया कि बच्चों का स्थान कार्यस्थलों पर नहीं बल्कि विद्यालयों और खेल के मैदानों में है। बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में त्रिपुरा के प्रयास लगातार जारी हैं। संदेश स्पष्ट है, एक बाल हितेशी समाज तभी बन सकता है जब हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और आशापूर्ण भविष्य जीने का अवसर मिले। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए मैं वैष्णवी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं नागालैंड, और नागालैंड के वोखा जिले में माउंट तेई, ये एक अनूठा पर्यटन स्थल है और इस पर्यटन स्थल में देश विदेश से लोग ट्रैकिंग के लिए जाते रहते हैं, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व भी है। नागालैंड की लोथा जनजाति के बहुत से विश्वास इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस अनूठे पर्यटन स्थल की आज हम आपको यात्रा करवाते हैं। हमारी कोहिमा संवाददाता ने हमें ये खास रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: वोखा जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट तीई एक प्राकृतिक आश्चर्य होने के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र भी है। लोथा समुदाय के लिए ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक पवित्र धरोहर है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे एचुई ली यानी मृतकों की भूमि और आत्माओं के निवास स्थान तक जाने वाला मार्ग माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर तीन पवित्र स्थल मौजूद हैं। पहला है एचुई फारी, जिसे मृतकों का बागीचा कहा जाता है। दूसरा है एचुई कू, जिसे आत्माओं की दुनिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। तीसरा है एचुई चू, एक पवित्र झरना जो मृत्यु, भाग्य और आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ माना जाता है। घने जंगलों के बीच स्थित मृतकों के बगीचे से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। बुजुर्गों के अनुसार यहां आने वाले लोग फलों को खा सकते थे लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने वहां से मनके जैसे दिखने वाले फल को घर ले जाने की कोशिश की लेकिन वे पर्वत से बाहर नहीं निकल सका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अंततः फल वापस रखने के बाद ही वो वहां से जा पाया। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मृतकों का मार्ग है, जिसे आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। परंपरा के अनुसार केवल प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त लोगों की आत्माएं ही इस मार्ग से गुजर सकती हैं, जहां अदृश्य रक्षक उनके परलोक का निर्णय करते हैं। इसके पास ही एक पवित्र झरना है, जिससे कई शुभ अशुभ संकेत जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यदि झरने की एक बूंद किसी व्यक्ति की हथेली पर गिर जाए तो ये मृत्यु का संकेत माना जाता है। वहीं झरने के आसपास दिखाई देने वाली पद चिन्हों को भी भाग्य का संकेत समझा जाता है। यदि पद चिन्ह गांव की ओर हो तो उसे लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि पवित्र मार्ग की ओर जाते पद चिन्ह आसन्न मृत्यु की चेतावनी माने जाते हैं। आज माउंट तीई वोखा जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी लोक कथाओं का अनुभव करने पहुँचते हैं। साथ ही पर्वत की नाजुक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के सख्त उपाय भी किए जा रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियाँ आज भी लोथा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं। यही कारण है कि माउंट ती केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि स्वदेशी विरासत, लोक आस्था और आध्यात्मिक विश्वासों का एक जीवंत केंद्र भी है। असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है और बहुत सारी ऐसी पहल बीते वर्षों में हुई हैं जिससे पूर्वोत्तर भारत के राज्य पर्यावरण संरक्षण के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में एक ऐसी पहल हुई। तवांग जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने को लेकर एक खास कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
4: प्लास्टिक कचरे को कम करने और टिकाऊ उपभोग के तरीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तवांग जिला प्रशासन ने सिंगल यूज पीईटी पॉलीथिलीन टेराफेटलेट पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो द्वारा जारी आदेशानुसार 1 जुलाई से जिले भर में 2 लीटर से कम क्षमता वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों की बिक्री, वितरण और सप्लाई पर रोक रहेगी। ये आदेश सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, इवेंट ऑर्गेनाइजर, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, वेंडरों और आम जनता पर लागू होता है, ताकि वे पानी के डिस्पेंसर, रिफिल स्टेशन, वाटर फिल्टर या ज्यादा क्षमता वाले कंटेनर जैसे उचित विकल्प का इंतजाम कर सके। आदेश में ये भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, अरुणाचल प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बाय लॉज 2023 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रतिबंधित सामान जब्त करना और कानून के अनुसार जुर्माना लगाना

0: शामिल है। प्रशासन ने इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग का आह्वान किया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर समय मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत का विकास बहुत तेजी से हुआ है। जहां एक तरफ ढांचागत विकास को हमने देखा है, वहीं पर्यटन और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर भारत ने अपने विकास की गति को हासिल किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में निवेश और उद्योगों के अवसरों को भी खोला गया है। तो आज हम कार्यक्रम के अंत में आपको एक विशेष साक्षात्कार सुनवा रहे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ। आइए ये खास बातचीत सुनते हैं।
2: पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद हम यहां पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
2: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
3: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
2: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
3: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
2: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
3: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
2: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी

0: वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड वेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
0: Thank you so much, sir.

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर डायरी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश छोटी बहन फिल्म का नगमा मुकेश का गाया हुआ।

छोटी बहन फिल्म का नगमा ये आपने सुना तो ये यकीनन एक तस्वीर जरूर उभरी होगी जिस शख्सियत पर ये नगमा फिल्माया गया था, और वो शख्सियत है सैयद रहमान खान, जिन्हें हम बेहतर जानते हैं रहमान के नाम से, अदाकार रहमान। 23 जून सन 1921 को यानी आज ही के दिन लाहौर में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में वाकई है।

गुरुदत्त के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी, शुरुआती कई फिल्में उनके साथ रहीं। यूं तो करियर का आगाज हुआ था 40 की दहाई में, और 40 की दहाई से लेकर 70 की दहाई के दौरान बड़ी उम्दा फिल्में रहमान ने दी। उनकी जो शख्सियत थी, उनकी पर्सनैलिटी थी, वो बड़ी खूबसूरत और बहुत लहीम शहीम। चूंकि आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, आपके बुजुर्ग वहीं से पंजाब आए थे, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने इंडियन फोर्स को ज्वाइन किया था और पायलट के तौर पर ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन यहां दिल लगा नहीं, जाना चाहते थे फिल्मी दुनिया में, और फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाई और किस्मत का सितारा इतना बुलंद हुआ कि काफी उम्दा फिल्में दी और बड़ी मकबूलियत पाई और एक अलग मकाम आपने हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में बनाया। और फिल्मों की अगर बात की जाए तो प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, बाहरों की मंजिल, दुश्मन, फिर सुबह होगी, दिल ने फिर याद किया वगैरह वगैरह फिल्में रहीं। अगला नगमा भी उन्हीं की फिल्म से है।

शुरुआती दौर की फिल्मों में अदाकार के तौर पर सुरैया के साथ उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी। प्यार की जीत फिल्म में वो सुरैया के मध्य मुकाबिल थे और इस फिल्म का एक नगमा था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये बहुत ही हिट हुआ था। और उसके अलावा बड़ी बहन उनकी एक और सुरैया के साथ कामयाब फिल्म रही थी। और कुछ और अदाकारों की तरह वो भी सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत में नहीं था ऐसा होना। मधुबाला के साथ पारस और परदेस जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। शुरुआत में अदाकार के तौर पर लीड रोल किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा फिर सपोर्टिंग रोल वो एक्सेप्ट करने लगे और प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में जमींदार के तौर पर, छोटे सरकार के तौर पर बड़े उम्दा रोल उन्होंने किए। और वक्त फिल्म में भी उनका बहुत ही उम्दा रोल था और गुरुदत्त के साथ बहुत अच्छी उनकी ट्यूनिंग थी। इसके अलावा बाहरों की मंजिल, गोमती के किनारे, दुश्मन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कई मुआविन रोल अदा किए।

5 नवंबर सन 1984 को 63 साल की उम्र में अदाकार रहमान ने आखिरी सांस मुंबई में ली। बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी और उनकी जो शख्सियत है वो हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा जावेद रहेगी।

0: गर्मियों की वो गर्म तरीन दोपहर थी। हर चीज गोया आग उगल रही थी। दानियाल अहमद की पोस्टिंग अमृतसर में नई नई हुई थी, इसलिए कुछ खास काम न था। वो लंच के बाद अपने दफ्तर के बराबर वाले क्वार्टर में आराम की गरज से लेटा हुआ था कि अचानक कॉल बेल की आवाज सुनकर चौंक सा गया। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कोई दफ्तर से आया हो किसी काम की गरज से। दानियाल ये सोचता हुआ उठा और बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर उसका चपरासी एक खातून को लिए हुए खड़ा था। दानियाल को देखते ही कहने लगा,
1: साहब
2: क्या बात है?
1: साहब ये खातून आपसे मिलने के लिए बजित थी। मैंने कहा भी कि साहब 4:30 बजे के बाद मिलेंगे, लेकिन इन्होंने जोर देकर कहा नहीं अभी मिलना है, और ये आपको जानती भी है।
0: वाकिफ होने का लफ्ज सुनकर दानियाल ने वापिस औरत की तरफ देखा। यकीनन ये वही औरत थी, लेकिन काफी तब्दीली आ गई थी उसमें। चेहरे पर निहायत संजीदगी, आंखों के गिर्द हल्के, और दुबली पतली सी वो औरत जिसे पहली नजर में वो पहचान न सका था, वो रुशना ही थी। उसके मुंह से बेअख्तियार निकला,
2: अरे तुम यहां कैसे? साथ में और कौन कौन आया है?
0: इतने सारे सवाल सुनकर जैसे वो बौखला सी गई। इससे कबल कि वो जवाब देती, चपरासी बोल उठा,
1: साहब आप इन्हें जानते हैं तो मैं जाऊं?
2: हां तुम जाओ और कुछ ठंडा भिजवा दो।
0: वो बिल्कुल खामोश थी। दानियाल ने उसे अंदर बुलाया। इस दौरान जैसे वो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी, दानियाल भी खामोश ही रहा और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और ग्लास निकालकर उसे पानी दिया। उसने एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। जब वो दूसरा ग्लास भर रही थी, दानियाल ने पूछा,
2: ये बताओ तुम यहां तक कैसे पहुंची?
3: मैं पाकिस्तान से लौट रही थी, और ये महज एक इत्तेफाक है कि कस्टम के दफ्तर में मेरी निगाह तुम्हारे नाम की तख्ती पर पड़ी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि तुम्हारी पोस्टिंग आजकल कस्टम ऑफिसर के तौर पर यहाँ हुई है, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं।
2: लेकिन ये बताओ कि तुम अकेली क्यों? पाकिस्तान से लौट रही हो, तुम्हारे शौहर, घर वाले और सब लोग कहाँ हैं?
0: अभी दानियाल सवाल कर ही रहा था कि चपरासी नाश्ता ले आया।
2: लो नाश्ता कर लो।
0: वो शायद बहुत भूखी थी, तेजी से नाश्ता करने लगी। दानियाल ने रेडियो खोल दिया। अचानक गाने की आवाज कानों से टकराई।

0: जब वो नाश्ता कर चुकी तो दानियाल ने फिर वही सवाल दोहराए और वो एक लंबी सांस लेकर बोली,
1: दानियाल साहब, आपको तो मेरे बारे में सभी कुछ मालूम है। आज से 5 साल पहले मेरी शादी मेरे खालाजाद भाई से हो गई थी और मैं कराची शिफ्ट हो गई थी, जहां मेरे शौहर का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास बहुत दौलत थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियां थी, और वो सब कुछ मेरे लिए भी था, लेकिन मुझे जो सुकून चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मेरे शौहर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे, उनके पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं था। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे पसंद नहीं करते, मैं सिर्फ उनकी अम्मी की पसंद थी।
2: अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे तो शादी के लिए राजी क्यों हुए?
1: वो अपनी अम्मी के बहुत फरमाबरदार थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके इनकार से वालिदा का दिल दुखे।
2: लेकिन किसी और के दिल की उन्होंने परवाह नहीं की?
1: वो बिजनेस में है, उन्हें इससे क्या गरज।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर यूं हुआ कि जब मैं उनसे अपने लिए वक्त निकालने को कहती तो वो यही कह देते कि देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त के अलावा सब कुछ है, मोहब्बत करने वाली माँ है, पैसा है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। अब उन्हें कौन समझाता कि मेरी असल जरूरत तो वो खुद थे। फिर धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और मैं आस का दिया जलाए वक्त की दहलीज पर यूं ही खड़ी रही। लेकिन शायद किस्मत मुझसे नाराज थी और ऊपर वाला भी खफा, इसलिए मेरे शौहर ने कभी सीधे मुंह मुझसे बात ही ना की। मेरी खाला ये सब देखकर कुड़ती रहती और जब आदिल यानी मेरे शौहर से कुछ कहती या समझाना चाहती

0: ने का फैसला कर लिया।
1: फिर तुम्हारे शौहर ने क्या जवाब दिया?
0: आदिल शायद खुद भी मौके की तलाश में थे। जवाब में उन्होंने वो सब कहा, वो अल्फाज जो एक औरत के गले का तौक बन जाते हैं। हसीन से हसीन औरत की जिंदगी अजीरन हो जाती है। उसने मेरी बातों के जवाब में मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर निकाल दिया।

0: कहाँ खो गई तुम रोशना? फिर क्या हुआ?
1: फिर क्या होना था, खाला जान इसी गम में अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं तमाम दुख झेलने के लिए अकेली रह गई। मेरा दम उस बंगले में घुटने लगा। आखिर एक दिन मैंने आदिल से खुलकर बात कर

0: ये सब बताकर रुशना रोने लगी और उसकी हिचकियां बढ़ गईं। दानियाल ने उसे पानी लाकर दिया और दिलासा देते हुए पूछा,
1: फिर तुम हिंदुस्तान कैसे वापस आई?
2: मेरे पास जो कुछ पैसे जमा थे उनसे मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया। अभी मेरा पासपोर्ट भी वैलिड था। इस तरह मैं यहाँ पहुंच गई। ये मुल्क जो मेरा अपना है, जिसके जर्रे जर्रे ने मुझे मोहब्बत दी है।
1: वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रहोगी कहाँ?
2: मेरी एक फुप्पी अलीगढ़ में रहती हैं। बेवा हैं, कोई औलाद भी नहीं है। उन्हीं के पास चली जाऊंगी, उनका सहारा मेरे लिए काफी होगा।
1: अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। आज तो तुम यहीं रुको, कल मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम बहुत थकी हुई हो, अब आराम करो, शाम को मुलाकात होगी।
2: ठीक है।
0: दानियाल रुशना को दूसरे कमरे में लिटाकर खुद अपने कमरे में आ गया। उसका जहन माजी के दरीचों से झांकने लगा। शाम धीरे धीरे आंगन में उतरने लगी और फिर रात के अंधेरे ने कायनात को अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज दानियाल दफ्तर से छुट्टी लेकर रोशना के साथ अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। दानियाल के दिल में कुछ ढके छुपे जज्बे सर उभारने लगते हैं। काफी देर तक दोनों खामोश रहते हैं, फिर दानियाल रोशना से मुखातिब होता है।
1: रोशना, जिंदगी बहुत सख्त और दुश्वार है, कैसे काटोगी ये पहाड़ से जिंदगी? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
2: दानियाल साहब, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश के बाद कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी।
1: मैं एक बात कहूँ, अगर तुम इसे मेरी मतलब परस्ती से तामीर ना करो।
2: नहीं नहीं, कहिए।
1: मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे पिछले गम भुला सकूं और तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां मैसर करा सकूं, अगर तुम हाँ कह दो तो।
2: दानियाल साहब, सोच लीजिए, मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, कहीं ऐसा ना हो कल लोग आपसे तरह तरह की बातें करें।
1: मेरा कोई करीबी अजीज इस दुनिया में तो है नहीं, और अभी दुनिया की बात तो मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए।

रोशना होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू लिए इकरार के लिए हां में गर्दन हिला देती है और दानियाल उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। अब वो दोनों अमृतसर वापस जा रहे थे और फजाओं में नगमे की आवाज गूंज रही थी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। ईरान

0: में ग्रुप जे के एक मैच में अल्जीरिया ने टूर्नामेंट में पहली बार खेलने वाली टीम उर्दुन को 1-2 से हराया। न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मैच में नॉर्वे ने सेनेगल को 2-3 से शिकस्त दी। इस तरह नॉर्वे की टीम ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। किंगाई खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान में LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। ईरान ने अमरीका के नायब सर JD वेंस के इस दावे को गलत करार दिया है कि ईरान फिर से एटमी मुआयना कारों को मुल्क में आने की इजाजत देगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका ने सांता कार्ला के मकाम पर अल्जीरिया ने उर्दुन को 1-2 से हरा दिया। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 के लोहर्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मिले सर मेरा तुम्हारा इस प्रोग्राम में सुनिए फिल्म दो गाने। आगाज आप तो ऐसे न थे फिल्म के दो गाने से, आवाजें मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की। मौसीकी तरतीब दी उषा खन्ना ने।

ये सुनिए आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये नगमा, फिल्म है एतबार, मौसीकी बप्पी लहरी की।

0: इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी इबादत करने के लिए हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है, इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को बख्श दे। अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत देखकर उनका मालिक खौफ खुदा से लरज गया और उसने फौरन उनको आजाद कर दिया। राबिया बसरी ने गुलामी से निजात मिलने के बाद कूफा जाकर इल्म दीन हासिल किया। अपनी जहानत के सबब उन्होंने कम वक्त में कुरान हदीस और फिका में महारत हासिल कर ली और वाज देने लगी। उनका वाज सुनने और इस्तफादा करने के लिए उस जमाने के बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात मसलन सुफियान सूरी वगैरह आते थे। राबिया बसरी से दीनी और रूहानी फैज हासिल करने के लिए बराबर लोग उनकी क़यामगाह पर तशरीफ लाते थे। वह अपने इलाके में आम लोगों के लिए रुश्द और हिदायत का जरिया बनी हुई थी। उन्होंने अपने कौल और फेल से लोगों को मुतासिर किया और लोग दीन की राह पर चलने लगे। एक बार सुफियान सूरी राबिया बसरी से मिलने आए और उन्होंने हाथ उठाकर दुनिया की भलाई के लिए दुआ मांगी। इस पर वो जारो कतार रोने लगी। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, हकीकी खुशी और भलाई तो दुनिया से किनारा कशी से हासिल होती है और आप इसी दुनिया में भलाई चाहते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और खुद को दुनियावी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर लिया। बिलाखिर वो बसरा के एक हुजरे के अंदर रहने लगी। उसी हुजरे में उनका इंतकाल हो गया। राबिया बसरी उस जमाने से ताल्लुक रखती हैं जिस जमाने में लोग रूह इस्लाम के बजाय मजाहिर इस्लाम पर जीने लगे थे। उन्होंने मजाहिर परस्ती की हौसला शिकनी की और लोगों को असल इस्लाम की तरफ चलने की दावत दी और उसमें कामयाब भी रहीं। आज भी राबिया बसरी का काम और कलाम जिंदा है और रहती दुनिया तक उनका नाम लिया जाता रहेगा और लोग उनसे इस्तफादा करते रहेंगे। आखिर में मैं राबिया बसरी का एक कौल बिला तबसरा नकल कर रहा हूँ जिसमें हमारे लिए सबक का अंसुर मौजूद है। तुम अपनी नेकियों को छुपाओ जिस तरह तुम अपनी बुराइयों को छुपाते हो।
1: राबिया बसरी, इस मौजू के हवाले से अभी आप तारीख साज प्रोग्राम सुन रहे थे। तहरीर जनाब शाह इमरान हसन की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

वॉइस फिल्म का दुगाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में, और लीजिए सुने किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये दुगाना। फिल्म है आपस की बात, मौसीकी अनु मलिक की।

की मौत होने की तस्दीक की है। ईरान ने अमरीका के नायब सद जे डी वांस के साथ इस दावे को गलत करार दिया है कि ईरान फिर से एटमी मुआयनाकारों को मुल्क में आने की इजाजत देगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका ने सांता क्लारा के मकाम पर अल्जीरिया ने उर्दून को 1-2 से हरा दिया। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया। जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुरबत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मतवस्त तबका उभरा है और इकतसादी सरगर्मियों को तकवियत मिली है। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई एमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमूज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपने अपने मुकर्रा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमू स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में यह 168 लाख टन था। दोहा में भारतीय सफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफन में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलूकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तकम है और वह जेर इलाज हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सफारतखाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदानों की मदद के लिए कतरी हुक्काम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम से कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया है कि दोहा में रास लफन जोन में वाके शहर के अहम रकी कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा है कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर

जी दोस्तों, जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। और आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 1971 की वो फिल्म जो कि इमोशंस में हम देखें वो एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम मन मंदिर। इस फिल्म में देखें तो दो बड़े अदाकार जिनकी अदाकारी की लोग आज भी कसमें लेते हैं, संजीव कुमार और वहीदा रहमान। जी हाँ, दो बड़े बड़े लीजेंड जो है वो इस फिल्म में रहे। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इस फिल्म में संजीव कुमार और वहीदा रहमान दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया है। संजीव कुमार ने दीपक भाई का किरदार निभाया, वहीं वहीदा रहमान ने उनकी छोटी बहन लक्ष्मी का किरदार निभाया है। दोनों एक दूसरे को जान से बढ़कर चाहते हैं, माँ बाप उनके हैं नहीं और दीपक ने ही लक्ष्मी को पाल पोस कर बड़ा किया। और दीपक का सिर्फ एक यही सपना है कि वो अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करे और उसकी जो जिंदगी है वो खुशियों से भर जाए। लक्ष्मी की शादी तय होती है रामू के साथ, रामू यानी कि राकेश रोशन, जो कि दीपक के दोस्त भी हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के ऐन वक्त पर कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं, कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि दीपक को अपनी बहन की खुशियों और उसकी आबरू की रक्षा करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। शादी के बाद भी लक्ष्मी की जो शादी होती है उसकी जिंदगी में, उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे अजीबोगरीब उतार चढ़ाव आते हैं और सभी मुश्किलों के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है उसका भाई दीपक। दीपक को अपनी बहन का घर बिखरने से बचाने के लिए अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, यहां तक कि अपने स्वाभिमान तक को भी कुर्बान करना पड़ता है। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म की एक कहानी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि एक भाई बहन की जो खुशहाली, जो एक भाई है वो अपनी बहन की खुशहाली के लिए किस हद तक जा सकता है, भाई बहन का प्यार किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करता है वो दिखाया गया है इस फिल्म में। उतार चढ़ाव, गलतफहमियां और आंसुओं के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और जो बिखरे हुए रिश्ते हैं वो संभलते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं और वही भाई का जो प्यार था, भाई का जो त्याग था वो रंग लाता है और जो सब बिखरा होता है वो सब समझ जाता है और महकता हुआ एक मन मंदिर बन जाता है।

आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म मन मंदिर। भाई अगर हम इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो इस फिल्म का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम इस फिल्म के संगीत और इस फिल्म के कुछ हल्के फुल्के के जो पल हैं उनकी बात ना करें। जहां एक तरफ ये जो फिल्म है पूरी फिल्म गंभीर और पारिवारिक मोड़ लेकर रखती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में महमूद साहब की जो बेमिसाल कॉमेडी है वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। और बीच बीच में जब भी महमूद साहब आते हैं ना तो वो भावुक हुए मन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा हंसने के लिए मजबूर तो कर ही देती है। वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार जी लता जी की आवाज में जो सदाबहार नगमे हैं वो भी एकदम कमाल के हैं। और आनंद बख्शी साहब के जो लिखे हुए गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी का जो संगीत है वो इस फिल्म की एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। बस इस फिल्म से जुड़े और भी किस्से और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

आजा। दोस्तों जुड़े हैं कार्यक्रम में की फिल्म के साथ और आज की फिल्म मन मंदिर। और जैसा कि हमने कहा कि जो इस फिल्म का संगीत था उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने गीत लिखे, अरुण बख्शी साहब ने। और उस दौर में जब ये फिल्म आई थी उस वक्त में वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो जोड़ी है वो हमेशा ही ऐसा कमाल करती थी कि जिस फिल्म में भी वो आ जाए तो वो म्यूजिकल हिट तो हो ही जाती थी। और वही कमाल इस फिल्म में भी हुआ, लेकिन इस फिल्म में एक श्रेष्ठ फिल्म की कहानी को भी जाता है जिसको निर्देशित किया तापी चाणक्य ने। अब तापी चाणक्य कौन है आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये इस फिल्म के डायरेक्टर तो हैं और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि ज्यादातर तेलुगु और तमिल सिनेमा में उन्होंने काम किया और बड़े बड़े फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया। यहां तक कि एन टी रामा राव के साथ उन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर जो फिल्में हैं वो बनाई थी। लेकिन जब उन्हें हिंदी सिनेमा में आने का मौका मिला तो उन्होंने चेन्नई के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई मन मंदिर, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल चेन्नई वाले हिसाब किताब से एकदम अलग, ठेठ उत्तर भारत की जो पारिवारिक मूल्य थे उन सबको मिला करके ये फिल्म बनाई गई थी। और जो फिल्म की शूटिंग है उसका पूरा जो बड़ा एक हिस्सा है वो चेन्नई के मशहूर वाहिनी स्टूडियो में हुआ था शूट। है ना कमाल की बात कि मतलब ये फिल्म बनी पूरी तरह से चेन्नई में थी लेकिन इसका जो पूरा एक सेट था वो पूरी तरह से उत्तर भारत के जो भाषा, उत्तर भारत का पहनावा और वहीं सबकी चीजों को लेकर बना था। और ये फिल्म ने कमाल दिखाया क्योंकि इस फिल्म में मतलब भाषा का और क्षेत्र की सीमाओं को सबको तोड़कर एक ऐसी फिल्म बनाई तापी चाणक्य ने जो कि पूरे देश के मन मंदिर में बस गई।

रिमझिम गुप्ता, संडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता के साथ, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम, कृष्णा देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं, अजित बावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने फिल्म की काफी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसौलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी एक और बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि तापी चाणक्य द्वारा निर्देशित यह एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा था और ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया है। प्रमीला भावसार के साथ वीरगांव गुजरात से अगला संदेश हम तक पहुंचाया है सुनील पाठक जी ने और ये संदेश इन्होंने हम तक कहां से पहुंचाया है ये हमें नहीं पता चल रहा है। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं और इसको भेजा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा ने खुशनुमा यह संदेश भेजा है हमारे पास। गुरमीत सिंह मीता जी ने साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। बालियान सरदना से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार हमारे साथ

0: शर्मा सुशीला लीलाधर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ इनके दोस्त राजू अग्रवाल चौधरी वास्य हमारे साथ जुड़े हैं। गांव शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से राजिंदर छिदार जसवीर जस्सी सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनारायण साहू कुमारी योगिता कुमारी गीतिका चंचल रानी साहू उमाबाई साहू हमारे साथ जुड़े हैं। भाई ग्राम भाईना मोइना पार लाटापोर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से सुधाकर राजा जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश सर्वत प्रणाली सानवी हर्षिता देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज वेद प्रकाश चौहान सूबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौंकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी अंगद परवीन शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम तक जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। शांतिनगर सोनीपत से कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्लिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मन मंदिर फिल्म में अभिनेता राकेश रोशन द्वारा साइन और शूट की गई सबसे पहली फिल्म है। हालांकि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले शुरू की थी लेकिन उनकी दूसरी साइन की गई जो फिल्म घर घर की कहानी है वो पहले बनकर तैयार हो गई और सिनेमा घरों में रिलीज भी हो गई। बहुत खूबसूरत जानकारी। और साथ ही साथ लिखते हैं कि वहीदा रहमान और संजय कुमार के साथ बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने साइन की। खूबसूरत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबलेश जी। और उन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है गांधी चौक बढ़ने राजस्थान से। इनके साथ है डैनी पवार और मनीष पवार के साथ ये जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेलो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएस नवानकर निर्मला नवानकर विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े हमारे साथ जुड़े नारायण इंगले आशीष मुरहरकर के साथ। और ये अगला संदेश बागपत उत्तर प्रदेश संजय डिंगिया नमन जी का। और जो संदेश हमारे पास आया है अगला सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान यूसा जान इम्तियाज और मुस्ताक डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन चंपा राजू नेहा जगदीश देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो अगला संदेश है हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़ी है। मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा के साथ छोटी बरेलिया से हमारे पास संदेश भेजा अहमद फूल वाले ने। संदीप मक्कर जी ज्योति मक्कर मन्नत मक्कर भारत कमल सहनी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया है। नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू निसार सलमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। तो दोस्तों ये थे वो ढेर सारे संदेश जिनके जरिए आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। बाल्की जी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और सुदर्शन मुखी जी का एक और संदेश। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू जामुन देवी जी का है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पॉल विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं। दत्तरंगी भट्टापारा से भागवत शर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी राजिया बेगम। और ये अगला संदेश कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी का। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए आप हम तक जुड़े। और कार्यक्रम में हमने बहुत सी चीजों के बारे में बातें की। पुराना सिनेमा हमें बहुत सी चीजें सिखाता था किस तरह से हमें जिंदगी को जीना है वो चीजें हमें सिनेमा से सीखने को मिलती थी। लेकिन अब ये सफर होता है यहीं पर खत्म। मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़ जाती हूँ लेकिन यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी

6.9 के तहत। खेती बाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम के अल नीनो प्रभाव और तेज सूखी बाड़ी के ऊपर संभावित चार्ज मीटिंग की थी। किसानों में कोई मुश्किल दरपेश न आंदोलन थी।

0: जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने अपने मुकली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। भारत ने अमरीका और ईरान विचकार हुए समझौते MOU का स्वागत किया है। नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग में संबोधन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने कहा कि ये दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। उन्होंने होर्मुज प्रतिरोध के खुलने का भी स्वागत किया और इस गल पर जोर दिया कि यह सप्लाई लड़ी की रुकावटों को दूर करन और खादों की रसायन वर्गियों वस्तुओं की घाट को हटाने में मदद करेगा। श्री डोवाल ने इस गल पर भी जोर दिया कि खेतर और इस वर्ग की नेविगेशन की वधेरे आजादी आर्थिक खुशहाली में योगदान पाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया फौजी टकराव भू सियासी अनिश्चितताव आर्थिक तनाव और विघनकारी तकनालोजिया वाले उथल पुथल के दौर लग रही है। उभर रही सुरक्षा चिंतावान उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि गैर रवायती खतरों ने राष्ट्रीय सरहदों पार कर लिया तो रवायती प्रतिक्रियावान चुनौती देने वाली समर्थावं विकसित की थी। उन्होंने एक बदती डिजिटाइज दुनिया में नवी विघनकारी तकनालोजिया दहशतगर्दी के बदते हुए लुकवे रूपों और साइबर खतरों की पछाण से समूहिक ध्यान देने की लोड़ वाली चुनौतियों वजह की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: श्री डोवाल ने इस गल पर जोर दिया कि ब्रिक्स देशों की वक् वक् महाद्वीपों और तजुर्बों की नुमाइंदगी करने के बाद जो तेजी में बद रहे संसार में एक विशेष भूमिका है जिथे टकराव के हल के रवायती साधन घट प्रभावशाली होंगे जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि समूले ये अहम है कि वह इन विकसित हो रही चुनौतियों को हल करने में अपनी भूमिका से विचार करे। ब्रिक्स की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समूह को एक होर बहुध्रवी विश्व व्यवस्था में चाहत करन आर्थिक सहयोग को मजबूत करन और आलमी दखण की आवाज को बढ़ाने उभर रही आर्थिकतावां दे एक गैर रस्मी गठजोड़ वजो तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने आलमी शासन और संस्थागत सुधारा में सुधारा का भी दृष्टिकोण दिता है। गृह के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड देश के करीब 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने एक गल नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन विखे नाफेड के नीलामी पोर्टल nafix.in में लॉन्च करदिया कही।
3: नाफेड में एक प्रकार के nafix.in दृष्टि ERP और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहे हैं।
0: उन्होंने भी कहा कि आने वाले 1.5 साल के सहकारिता मंत्रालय यह यकीनी बनाएगा कि दालों की पूरी खरीद सीधे किसानों को ही की जाए।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCGF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCGF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेगी।
0: खेती बाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मौसम के आलमीना प्रभाव और खेती बाड़ी पर इसके असर के मद्देनजर एक जायजा मीटिंग की थी। मीटिंग में कई राज्यों के खेती बाड़ी मंत्रियों, सतपुरा जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने शिरकत की थी। विचार वटांदरे दौरान घट बारिश की स्थिति में जरूरी तैयारियां, विकल्पक फसल योजनाएं और किसानों के हितों की

खेती ते किसी भी माड़े प्रभाव घट करने लिए पूरी तरह वचनबद्ध उन्होंने अगे कहा कि सरकार हर स्थिति का सामना पूरी तैयारी संवेदनशीलता ते तालमेल नाल करेगी ताकि किसानों में कोई मुश्किल न आवे। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ @AIRJalandhar। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 5 ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 7 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 56 ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। इस साल केंद्र सरकार ने कुल 131 पदम अवार्डा का ऐलान किया। इन्हां विच 5 पदम विभूषण 13 पदम भूषण और 113 पदम श्री शामिल ने। अवार्ड प्राप्त करने वालों विच 19 औरतां ने जदों कि 16 नूं मरण उपरंत सम्मानित किया जाएगा। पदम विभूषण पदम भूषण और पदम श्री देश के 7 उच्च नागरिक सम्माना विचों एक ने। आज राष्ट्रपति पाठ कुछ शख्सियतों को पदम अवार्ड प्रदान करेंगे। इन्हां विच टेनिस के महान खिलाड़ी विजय अमृतराज अदाकार मोटी गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्गिया प्रमुख हस्तियां शामिल ने। 1954 में शुरू किए गए इन अवार्डों का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। व्यापार के सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोयल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में

0: व्यापार समझौते नू अंतिम रूप देन वल फैसला के तौर ते अगे वधरे ने जो दोनों देशों लई नवे आर्थिक मौके खोलेगा अते अमरीका भारत आर्थिक प्रणाली नू महत्वपूर्ण तौर ते मजबूत करेगा। अयोध्या के राम मंदिर में मिले दान की हेराफेरी के हिसाब की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने आपकी मंडली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट लखनऊ के डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने विदेश मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने कहा कि जांच अजे भी जारी है और होर तथ इकट्ठे किए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर विच मिले दान की हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर ट्रस्ट की बेनती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक कथित अध्यापक भर्ती परीक्षा धोखाधड़ी मामले के संबंध में चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बटूर और मदुरई में 18 थानों की तलाशी ले रही है। डायरेक्टोरेट ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्रीय प्राप्त शाखा वालों 2017 में दर्ज की गई एक एफआईआर पर आधारित है। देश विच 5 लाख तो वध अंग दान का अहदिया है। यह अंग के टिशुदान प्रति लोगों विच वध रही जागरूकता और समूहक वचनबद्धता को दर्शाता है। सेहत के परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा कि अंगदान ट्रांसप्लांटेशन की उड़ीक कर रहे मरीजों को उम्मीद और जीवन में सुधार का मौका दिता है। मंत्रालय मुताबिक यह प्राप्ति समाजिक जिम्मेवारी और भाईवाली को विकसित करने लिए सरकार के निरंतर यत्नों का नतीजा है। राष्ट्रीय अंग टिशु ट्रांसप्लांट संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार ने अंगदान लिए देश भर के नागरिकों वालों मिली भारी हिमायत लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने सारिया राज सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों की निरंतर वचनबद्धता और सहयोग की भी शलाघा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने नवे सुरक्षा खतरों और चुनौतियों प्रति सुचेत रहने की लोड़ पर जोर दिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड़ के नीलामी पोर्टल nafeds.in में लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम के अल नीनो प्रभाव से खेतीबाड़ी के इस असर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों ने कोई मुश्किल दरपेश न आने देने की सरकार की वचनबद्धता बताई। भारत के अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत के अमरीका एक मजबूत तवल्ले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाल फैसले के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान ही सादा ए बुलेटिन खत्म होगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मंसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनेल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड दिए गए हैं। टेनिस के सरकरदा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अनका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड

शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कुरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तहत में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, सामाजिक काम, अवामी

0: से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, रोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए उन्हीं गुरुदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुरुदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आजादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
1: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रूकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ्त से इक्तिसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इक्तिसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रूकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने यह भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी।

0: केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबियर्ग में मुनाकदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मुकदम किया है और इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 जगहों पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage.

0: last game in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, रोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मूवी का ही होता है, तो मलोरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है। जब हमारे मेजोरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता

0: के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ। और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खोलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात

जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 2 नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु

आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति, और आज बात होगी एक ऐसे अदाकार के बारे में जिन्होंने अपनी बेबाक आंखों, दमदार आवाज और बेमिसाल अदाकारी से 80 और 90 के दशक में एक अलग ही डंका बजाया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर एक आम लड़का जो आगे चलकर बनता है सिनेमा का एक अनमोल नगीना। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसे आप सभी और हम सभी जानते हैं राज बब्बर के नाम से। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उनके हसीन गीतों और दिलचस्प किस्सों के सिलसिले को इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से जिंदगी में शामिल हुए आज के दिन आए। जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम जो आज राज बब्बर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज का दिन सिनेमा की दुनिया के लिए कुछ खास है, क्योंकि आज ही के दिन इस सितारे का जन्म हुआ जिसने थिएटर की सादगी को सिल्वर स्क्रीन का स्वाभिमान बना दिया। जिन्होंने कभी अपनी एकदम कड़क आवाज से जुल्म के खिलाफ दहाड़ लगाई तो कभी एक आशिक बनकर अपनी मखमली शायरी से दिलों को मोहम कर दिया। जी दोस्तों, आज जन्मदिन है फिल्म इंडस्ट्री के इन्हीं बेबाक और हल्दर अजीज अदाकार राज बब्बर साहब का। तो दोस्तों, आप सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से राज बब्बर साहब को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज ही के दिन वो आए हैं और राज बब्बर साहब की जो शख्सियत है वो एक अलग सा चार्म अपने अंदर लिए हुए है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो

इतनी दमदार होती है कि वो सीधे रूह तक उतर जाती है। तो दोस्तों, उनके सालगिरह के इस खुशनुमा मौके पर क्यों ना एक खूबसूरत सा ऐसा सदाबहार नगमा सुने, जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरत सी आवाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ में, मोहब्बत के साथ में इस गीत को गाया है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस शख्सियत को जिसका नाम है राज बब्बर। राज बब्बर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी से निकले एक ऐसे आम लड़के जो कि आगे चलकर बने सिनेमा का नगीना। जी हाँ दोस्तों, राज बब्बर साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी एक गंभीर सी शख्सियत थी और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी ने सबको एकदम से चौंका कर रख दिया। लेकिन ये जो सफर था वो इंटेंस एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जब रोमांस करने का नंबर आया तो उन्होंने रोमांस भी उसी संजीदगी के साथ किया। लेकिन उनके किरदारों में एक अलग सी मासूमियत थी, एक अलग सी शिद्दत थी जो कि सीधे उतर जाती थी दिल को। जी हाँ दोस्तों, राज बब्बर साहब की अगर हम फिल्मों की बात करें तो उसमें 1980 की आई फिल्म इंसाफ का तराजू, जिसे बनाया था बी आर चोपड़ा साहब ने, एक ऐसी खूबसूरत फिल्म थी जो कि राज बब्बर साहब के करियर का एक टर्निंग प्वाइंट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन असली जो एक और किरदार निकल कर आया उनका, वो

बहुत ही फिल्म लिखा जो कि सन 1982 में आई थी। इस फिल्म में राजबब्बर साहब ने एक ऐसे शायर का किरदार निभाया था जो कि अपनी पाक मोहब्बत को पाने की जद्दोजहद करता रहता है, और इस फिल्म में वो पूरी तरह से उदास, गम और प्यार में डूबे रहते हैं, लेकिन एक भी आंच नहीं आने देते अपने प्यार के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सा उनका किरदार था, और शायद यही वजह है कि वो फिल्म और उस फिल्म के जो गीत हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। राजबब्बर साहब ने सिर्फ कुछ फिल्मों में नहीं बल्कि ऐसी तकरीबन दर्जनों फिल्मों में इतना बेहतरीन काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने खुद को किसी एक इमेज में नहीं बांधा। जहां उन्होंने निकाह फिल्म में एक नर्मदिल शायर का किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ आज की आवाज फिल्म जैसी फिल्मों में एक आक्रोश से भरे हुए एक आम इंसान का किरदार निभाया जो कि आम इंसान की जरूरतों को, उनकी तकलीफों के लिए आवाज उठाता है। बहुत से किरदार उन्होंने ऐसे निभाए जो कि आम आदमी के दिल के बिल्कुल करीब थे, और इन आक्रोश और ड्रामों के बीच में उन्होंने की फिल्म प्रेम गीत। इस फिल्म का हर गीत दिल के एकदम करीब जाता है। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत पंकज दास की आवाज में उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं राजबब्बर साहब को, जिनका जन्मदिन है। और हम देखें तो 80 के दशक के बीच में राजबब्बर साहब एक ऐसे हीरो के रूप में उभरे जो कि समाज की कुरीतियों को, उनके जो भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है या फिर जो भी कुछ कमियां हमारे समाज में कानून में है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इसी बीच आई उनकी फिल्म आज की आवाज, जिसमें उन्होंने एक ऐसे प्रोफेसर का किरदार निभाया था जो कि हालात के चलते सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लेता है, यानी कि प्रोफेसर से सीधा हथियार उठाकर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में। और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। वहां से शुरुआत हुई उनके अवार्ड के सिस्टम की। और अभी हम शुरुआत करेंगे हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेशों की भी, जिनके संदेश हमारे पास ढेर सारे आ रहे हैं। और दौलोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अविराज सिंह के साथ में, दादा बाबू रोड डीडी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज हसन, बाबू अहद मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव ज्योति, रानी गुरमंत कौर, मनु जी का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है पंकज शर्मा जी ने, और लिखते हैं कि ये जो गीत आपने चलाया बहुत ही खूबसूरत लगा। और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और उनके साथ है मास्टर अल कबीर, सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, ग्राम परजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक चंसोलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वड़िंग खेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा के साथ, गावना थाना पंजाब से अजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निरफर फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनिता मुखी, सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से, हीरामणि वर्मा जी जुड़े हुए दतरंगी भट्टापारा से, और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कस्बा गन्ना और यूपी से, छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश रुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संदीप मकर, ज्योति, मन्नत, भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या,

नीता भागने जी, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। गांव घिटोरनी नई दिल्ली से हम ऐसा जुड़े हैं साबिन हुसैन मिरासी अमीना बेगम के साथ, और गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश, दिव्यांश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना संदेश हम तक पहुंचाया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से, और गिरगांव गुजरात से अजित भावसर प्रमिला भावसर जी ने, और इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी हम तक दी, और लिखते हैं कि राजबब्बर साहब के जो दामाद हैं वो मशहूर क्राइम सीरियल क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी जी हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है वो उसको पहुंचाया है पारगन मल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक मधु नायक जी ने, पीएस नवानकर निर्मला नवानकर विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े नारायण इंगले, आशीष मुरेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऊपरकोट मामला चौकोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन, शेरनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन और पार डिंगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए आप सभी हम तक जुड़े, और भी बहुत से संदेश जिन्हें हम अभी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत राजबब्बर साहब की खूबसूरत फिल्मों के चुनिंदा पिटारे में से।

दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में अभी आप सुन रहे थे राजबब्बर साहब के बारे में। और सचमुच राज साहब और उनके गीत, उनके किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। वैसे थिएटर से लेकर फिल्मों तक का जो उनका सफर है और फिल्मों से लेकर राजनीति तक का जो सफर रहा, सब एकदम बेमिसाल रहा। तो दोस्तों, आज उनके इस जन्मदिन के आखिरी प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपनी कशिश से दुनिया को सरोबार रखें। तो दोस्तों, लेती हूं अभी आप सभी से अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की और छोड़े जाती हूं आप सभी के लिए खूबसूरत संगीत उन्हीं की फिल्म से। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। यह वे 366.3 मीटर अर्थात 800

हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सभी आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम आदब नुमा। 4:00 से आप लोग सुन सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समझिए था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप आसिया मेमुना से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए अब नए हुरमुस खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रूकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। लियोनेल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड अता करेंगी। इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूटी, फिल्मी गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा इन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूरा अवार्ड गैर

0: देखिए तीनों का संयोग और देखिए सपना झरना नींद का, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना जीवन का इतिहास। सपना झरना नींद का जागी आंखें प्यास, और पाना खोना खोजना जीवन का इतिहास। और दोबारा कर रहा हूं कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और देखिए कि एक पलड़े में प्यार रख दूजे में संसार, एक पलड़े में प्यार रख दूजे में संसार, और बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार, बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार, और चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, और उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद, चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद। और बहने चिड़िया धूप की, बहने चिड़िया धूप की दूर गगन से आए, बहने चिड़िया धूप की दूर गगन से आए, हर आंगन मेहमान सी पकड़ो तो उड़ जाए। और जितना भीगे बावरी उतनी सुलगे प्यास, जितना भीगे बावरी उतनी सुलगे प्यास, और सावन बरसे 60 दिन नैना 12 मास। एक आखिरी दुआ भेज रहा हूं कि सूरज से धरती तपे छाया ढूंढे काग, सूरज से धरती तपे छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले धुआं दिखे ना आग।
1: अभी आप जनाब निदा फाजली से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। समीन कलामी शायर से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अफसाने की। अफसाना असल में वो कहानी है जो हमारे आसपास की कहानी है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके किरदार हमारे आसपास के ही होते हैं, लेकिन एक आम आदमी की निगाह उन्हें देख नहीं पाती। लेकिन जब एक कलमकार किसी वाकये को या किसी किरदार को जीता है तो अपने कलम के जरिए उस किरदार को जिंदगी अता कर देता है। ऐसी ही एक कहानी या अफसाना लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी। आइए उनसे सुनते हैं उनका यह अफसाना वापसी का सफर।
2: अवध आसाम एक्सप्रेस अपने मुकर्रा वक्त पर दिल्ली जंक्शन से रवाना हुई थी और अगली सुबह अपने मुकर्रा वक्त पर उसने अपना 1105 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। करीब करीब नाकाबिले यकीन था कि इतना तवील सफर एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक भी मिनट की ताखीर के बिना तय कर लिया था। माजिद अपना बैग शाने से लटकाकर अपने स्लीपर कंपार्टमेंट से बाहर आ गया। उसे अगर यहां शहर में एक जरूरी काम न होता तो वो अवध आसाम एक्सप्रेस से आने के बजाय स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से आता, ताकि उसे यहां गाड़ी तब्दील न करनी पड़ती और वो सीधे अपने शहर ही उतरता। तेजी से कदम उठाते हुए वो स्टेशन से बाहर आ गया, एक रिक्शा लिया, ताजपुर रोड पर पहुंचकर अपना काम निपटाया और दूसरा रिक्शा लेकर फिर रेलवे स्टेशन आ गया। एक बार फिर उसे हैरत हुई, सियालदह से आने वाली पैसेंजर गाड़ी अपने मुकर्ररा वक्त पर आ रही थी। ये तो उसे बाद में मालूम हुआ कि इस गाड़ी को तो कल आना था, यानी ये गाड़ी 24 घंटे लेट चल रही थी। बहुत थोड़े से लोग प्लेटफार्म पर इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल ट्रेन आई, बलाए नाम लोग सफर कर रहे थे। माजिद बड़े आराम से एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। पूरे कंपार्टमेंट में उसके अलावा सिर्फ दो मुसाफिर और थे जो कहीं पीछे से आ रहे थे। माजिद खिड़की

0: मुक्तापुर पर रुकी। कंपार्टमेंट में मौजूद वो दोनों मुसाफिर जो कहीं पीछे से आ रहे थे उतर गए। अब कंपार्टमेंट में सिर्फ माजिद रह गया था। कमर कटने सी लगी थी। माजिद ने कमर से रुपया खोलकर बैग में रख लिया और फिर बैठकर खिड़की से अपनी धरती, अपने माहौल का नजारा करने लगा। ट्रेन रवाना हुई तभी उसने देखा कि दो पुलिस वाले एक लड़के को पकड़े ले जा रहे थे। लड़के का हर अंदाज खासा जारहाना था। ये इतने छोटे लड़के को ये लोग कहां पकड़ कर ले जा रहे हैं? 15-16 साल का ये लड़का न जाने क्या जुर्म कर बैठा। बेचारा जेल जाएगा और शायद वहां से पक्का मुजरिम बनकर निकलेगा, कौन जाने। नौजवानों को अच्छी तरबियत नहीं मिल रही है। गाड़ी किशनपुर पर रुकी और 2 मिनट के बाद जब चली तो दो नौजवान कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। माजिद खिड़की से अपनी धरती का नजारा करता रहा जिसकी मिट्टी की रूह अफजा महक उसकी रग रग में रची हुई थी। ये छतरी से नजर आने वाले ताड़ के खूबसूरत दरख्त, तालाबों के ठहरे हुए शांत पानियों पर मखाने के गुलाबी से नजर आने वाले ये खूबसूरत पत्ते, दूर पर महुए का वो माजिद चौंक पड़ा। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो दोनों नौजवान जो अभी किशनपुर पर कंपार्टमेंट में आए थे माजिद के सामने खड़े थे। एक के हाथ में देसी तमंचा था जिसकी मोटी भद्दी नाल का रुख माजिद की तरफ था। खड़ा हो। खाली हाथ नौजवान ने दुरुस्त लहजे में माजिद से कहा। माजिद चुपचाप खड़ा हो गया। नौजवान ने उसकी पैंट से उसका पर्स निकालकर अपनी पैंट की जेब में रखा, उसके हाथ से घड़ी खोलकर अपने पैंट की जेब में रखी और फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली। कुछ भी नहीं मिला। माजिद के बैग की तरफ इशारा करके बोला, इसमें क्या है? माजिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब्बा के लिए एक कुर्ता पैजामा, अम्मा के लिए शलवार जम्पर दुपट्टा, तुम दोनों के लिए एक एक पैंट शर्ट का कपड़ा और तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए जमा किए हुए 20,000 रूपये।
1: वापसी का सफर। अभी जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी से आप उनका ये अफसाना सुन रहे थे। उम्मीद है आपको अफसाना पसंद आया होगा। आइए अब चलें जरा मौसीकी की दुनिया में, जहां गजल सरा है जगजीत सिंह।

मंडल के साथ ही सामिन आज का हमारा ये प्रोग्राम अदबनुमा अब खत्म होता है। उम्मीद है हर मर्तबा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी राय और मशवरे जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश बंधन फिल्म का नगमा कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में।

और सामने ये सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आमने सामने फिल्म का नगमा नगमा निगार आनंद बख्शी मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

0: और सामने जब सुनिए सुरेश वाडकर और अनुराग पोडवाल की आवाजों में भ्रष्टाचार फिल्म पर नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म थी मन मंदिर। और छावली अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में रखवाला फिल्म का नगमा मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।
1: रोक लो

और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आरती मुखर्जी की आवाज में मासूम फिल्म का नगमा जिसे मौसीकी सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: उसने ये भी बताया है कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नाशिक की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया है। जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका शुमार मुल्क के सबसे ज्यादा अजीम रहनुमाओं में होता है जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को महफूज रखने में मदद की। उन्होंने नैफेड नीलामी पोर्टल शुरू करते हुए नई दिल्ली में एक इज्तम से खताब करते हुए ये बात कही। इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों और कारकुनों ने चार बलोच सरगर्म कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत की है जिनमें महरांग बलोच भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को सरीहन नाइंसाफी और पाकिस्तान की तरफ से की गई इसे अदालती दहशतगर्दी करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फ्रंटियर कोर के एक अहलकार के कत्ल से वाबस्ता चार बलोच कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बलोच कौमी तहरीक ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मामलुकत करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि इस्लामाबाद बलोचिस्तान में खौफ हरास और दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने इदारों का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल में बदनवानियों की जांच करने वाले कमीशन ने 16 अफराद के खिलाफ बदनवानियों के सिलसिले में काठमांडू के खसूसी अदालत में एक केस दर्ज कराया है। इन 16 अफराद में पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल भी शामिल हैं। पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल और इतलाती टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर सुनील कुमार केसी के खिलाफ पासपोर्ट की छपाई में होने वाली बदनवानियों के लिए यह केस दर्ज किया गया है। अवामी जमहूरी कांगो में इबोला में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा होने की तस्दीक हो गई है। मुल्क की सेहत के हुकाम ने 267 अमवात की तस्दीक की है। 371 मरीजों को अलग थलग रखा गया है या फिर वो अस्पताल में जेर इलाज हैं जबकि 112 अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। इतवार को 60 अमवात समेत 202 मुश्तबा मामलात का भी पता चला था। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। लायन मेस्सी फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमूज खोले जाने का खैरमकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है और अवामी जमहूरी कांगो में इबोला में मुबतला मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में एकदारी के तरकी वर्ड्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात भी खत्म पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम बेहतरीन खिदमतों में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिनट पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम पेशादर खिदमत होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दा आगाज कर रहे हैं शेरी जबान सराइकी दे प्रोग्राम जोक माही दे नाल।

0: इंडिया रेडियो दासियाई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाने कीते आज दा प्रोग्राम घिन के हाजरा। के हाल चाल हिन तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते चलो शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम।
1: मैं प्रमोद चोपड़ा पानीपत तो तुहाडा सभा दा आज स्वागत करदा। आज काव्य पाठ सरायकी दे विच साडे कोल जिहड़े मेहमान आए हन ओ सब कोल पहले श्री सुंदर लाल छाबड़ा जी बल्लभगढ़ तो पधारन ते सरायकी कविता बड़े ही अच्छे ढंग नाल करेंगन। ते मैं उन्हां को निवेदन करेंगा कि वो अपनी कविता सुनावन पेश करन।
2: ते मैं हुण तुहानू अपनी कविता सुनावन वेंदा पिया। उन्दा शीर्षक है सुपने दा शहर। शहरां तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। शहरां तो शहर मशहूर शहर मुंबई, सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई। चारों पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे।
1: वाह क्या बात।
2: चारा पासे भीड़ ही भीड़, जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं, चलदे फिरदे दुरकदे। ना रात नू सुनणेंदे हैं ते ना दिन नू सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैन। ना रात नू सुनणेंदे हैं ना दिन नू सुनणेंदे हैं, हर वेले भजदे पैन। बस पैसा पैसा ते पैसा, छोटा जई घर थी बने अपना, छोटा जई घर थी बने अपना। जिवे तिवे जिथा तक अपनी छत भी कोनी, बस पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पत्ता कोनी, सुनने ना भी कोनी। छोटा जई घर थी बने अपना, जिवे तिवे

0: Ya va.
1: Hoy podemos correr aquí.
0: Oh,
1: acabe ya.

0: बहुत सुंदर तरुणों में बहन जी ने सुनाए, बहुत चंगा लगे। मैं भी, मेरा भी मन कर दिया कि मैं भी कुछ सुनावा।
1: बिल्कुल जी, कहीं सुनाओ।
0: तरुणों में कोशिश करता पाया।
1: स्वागत।
0: अजकल जिन्हें हालात थे पन साडे मुल्क विच, कुछ लोग मुल्क विच रह के साडे देश दा खानदान, लेकिन गोल किसी होर दे खानदान देश दे
1: जी।
0: ते ओहदे बारे च मैं थोड़ा कोशिश कीती है। जिखा दा खांदे हो, जिथा दा खांदे हो, खादा पिता हराम ना कर। जिथा दा खांदे हो, जिथा दा खांदे हो, खादा पिता हराम ना कर। पैरांदे हो, जिथा पैरांदे हो, उस झाको कतलेआम ना कर।
1: बहुत बहुत।
0: जिथा पैरांदे हो, जिथा

ਜਿੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

हाँ जेड़ा देश दे टोटे करन दे चार रख दे उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है जिथा दखांदे हो के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू तपदा है के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू तपदा है के बन के दुश्मन द कुत्ता तू साकू पटदा है के बन

0: बदल तू अमला को, जेकर बदल तू सकदा है।
1: सही बात, राइट।
0: बदल तू अमला को, जेकर बदल तू सकदा है। जिथा दा खांदे हो, कदी तू सोची मेरा देश ए महान क्यों है। कदी तू सोची

0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: जरा विचार करे, दुनिया तो उच्च शान क्यों है जिथा दखांदे हो। तू प्रेम करसी तमिल सी एदा गुणा करके, तू प्रेम करसी तमिल सी एडा गुणा करके, पले से नफरत तराणा पोसी हा डर डर के।
0: वाह क्या बात,

0: तो कत्ले आम न कर, तो कत्ले आम न कर, तो कत्ले आम न कर, तो कत्ले आम न कर।
1: बहुत सोने का कविता है तुम्हारी, कत्ले आम ना कर। बहुत बहुत
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा इस कड़ी च अपने छाबड़ा साहब को दोबारा निवेदन करेगा कि आप एक और कविता पेश करो सुंदर लाल जी छाबड़ा
1: जी। हूं मैं तुम जी कविता सुना पाया, हूं कविता का शीर्षक है हो मैं ना लिखसा। बहु सोचिया है हो मैं ना लिखसा, बहु सोचिया है हो मैं ना लिखसा, वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा, गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। मैं ते तू, तू ते मैं, मैं ते तू, तू ते मैं, केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू, तू ते मैं, केड़े केड़े सपने डिठे हन। कड़ी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत, छप छप छप छप ताई कीती है

0: कदी दरिया किनारे बह पानी विच पैर घत छप छप ताए कीती है तमाए पानी दी बुक्का भर तेले ते पाती है दमाए पानी दी बुक्का भर तेले ते पाती है खेत मुनेरा ते बैके खेत मुनेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन खेत मुनेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन हेक सिलाई तेली है ते हेक सिलाई मेरी
1: बहुत सोना वाह
0: खेत मुनेरा ते बैके सपने असा बुनन हन हेक सिलाई तेली है ते हेक सिलाई मेरी है
2: क्या बात
0: ओ सोना सोना बाल है अपना ओ सोना सोना बाल है अपना निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा होंदा ओ सोना सोना बाल है अपना निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा होंदा तू ते मैं ते तू तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल मिलाके खिलदे हसे तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल मिलाके खिलदे हसे ते हुण किथा गई ओ तेरी खेल ते हुण किथा गई ओ खेल ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई ते किथा गई हो ओ तेरी खेल ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई मैं बैके हुआ मुंडेरा ते मैं बैके हुआ मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी सोचदा हां मैं बैके हूं मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी ते सोचदा हां हुण मैं ना लिखसा हुण मैं ना लिखसा हुण सुंदर ना लिखसी हुण सुंदर ना लिखसी
1: बहुत
0: सोहना पर लिखते रहो जी लिखते रहो आशीर्वाद रहो आशीर्वाद बड़े लोगों का
2: वाह जी वाह बहुत वधिया
0: जी
2: ते मैं फिर दोबारा दरखास्त करता पिया बहन जी सोमर बुआ जी को कि एक मोहब्बत की कविता उन्होंने आखिर अस पेश करे सो
1: जी
2: ते निवेदन है
1: दो नजमा पेश करें दी भैया
0: जी स्वागत
1: एक तरन्नम विच
0: जी
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होमर दा एहसास रिया
2: बहुत बढ़िया
1: तिलस्मी खावा विच तेरे होमर दा एहसास रिया मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया मैं हर वारी अपना होकर भी अपना ना रिया मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मेरी बेपाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मैं सब दे विच भी तन्हा ही रिया मैं सब दे विच तन्हा ही रिया हिक कुर्सी ता कुछ किताबा हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे कुछ नाल चाह दी चुस्कियां दा वी रिया गुमा हाई शजर को मेरे होवण दा
0: क्या
1: गुमा हाई शजर को मेरे होवण दा मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी
0: सही
1: हवावां दी तस्वीर कहनी होंदी उस दा वजूद हर सांसा विच दिखिया मेरी बेका मेरी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई मैं सब दे विच भी तन्हा ही रिया मैं सब दे विच तन्हा ही रिया
0: बहु खूब जी बहु खूब हवावां दा कोई
1: तस्वीर
0: तस्वीर नहीं होंदी क्या बात
2: बहुत
1: लेकिन हर सांसा विच
0: हां जी
1: उसदा एहसास होंदा
0: एहसास रहना ही पैंदा
2: बहुत वधिया
0: बहु वधिया
1: एक तरन्नम विच मोहब्बत
0: जी

तलवे चट चट जीवे, इंदे तलवे

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
0: जी, मैं जीवन ज्योत, ज्योत के अंदर वैसे सारे, मैं फाइन आर्ट डिप्लोमा
1: जी। अच्छा ठीक है।
2: मम्मी उन्होंने गल तो पूरी करन दियो जी, फाइन आर्ट्स तुसी
0: डिप्लोमा कीता जी।
2: ओह दैट्स ग्रेट जी, मेरा नाम कविता है
0: जी, मैं जानता।
2: ए मेरे मम्मी ने मेरे बारे बहुत फिक्र करते रहते ने।
1: कम ऑन,
2: वैसे मेरा सब कुछ यही ने, मेरे टीचर भी, मेरे हेल्पर भी। वैसे तुसी बुरा ना मनना है ना निकाल
0: जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: हां जी जरूर,
0: बहुत सुरीले हो तुसी।
2: अच्छा तुसी सुनिया मैंने
0: जी? अक्सर अक्सर सुनता। बहुत बड़ा फैन है तुहाडा। तुहानू कदे जान दी जल्दी तो नहीं?
2: नहीं मैनू कोई जल्दी नहीं।
1: कविता आपा बेटा
2: मम्मी नू होती है, क्या काम करना है, ओ काम करना है, इत्थे जाना है, उत्थे जाना है। वैसे भी मैं जल्दी करके करना भी की है।
1: जे तेरा दिल कर रहा है बेटा तो कहते बैठ जाने आ।
2: जी मम्मा, वैसे थानू कोई जल्दी ते नहीं ना कि ते मैं थोड़ा वक्त
0: आया? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो थोड़े ना मिल के, एक्चुअली कविता जी मैंने म्यूजिक ना दीवान की दिहात था, पागलपन दिहात था प्यार। पर मैं आप पता की करता, पेंटिंग, स्केचिंग, लैंडस्केप्स, ऐसा ना कुछ।
2: अच्छा मतलब तुसी भी कलाकार हो? काश मैं तो फाइन आर्ट देख सकती।
0: प्लीज
2: चलो छोड़ो।
1: कविता इधर आ बेटा तू।
2: हाँ ठीक है। हाँ जी मम्मा, थैंक यू। की नाम दसिया तुसी अपना?
0: ज्योत।
2: हाँ ज्योत, ज्योत जी थोड़ी गल सुन के मेनू इंज लग्या कि जिवें मेरी अखा ना होण दा थोड़ा नुकसान होया।
0: की मतलब मैं समझा नहीं?
2: देखो ना तुसी अपनी पेंटिंग, स्केचेस, लैंडस्केप दिखांदी ते मैं तारीफ कर दी। हुण एक कदर जान तां तुसी गवाह ही लिया। हरेक कलाकार तारीफ तो भुखा हुंदा है ना मामा?
0: बिल्कुल सही कहा तुसी, तारीफ की इच्छा इंसान की वड्डी कमजोरी हुंदी। मेरे ते खास करके।
1: कविता दी परफॉर्मेंस तो बाद जो तारीफ ते ताड़ियां दा शोर उच्चा हुंदा है ना, तो मैं ते चेहरे ते एक अजीब चमक देखदी हां, बहुत ही सोहनी।
2: पर किन्नी कमाल दी गल है ना मामा, मैं उस वक्त शीशे च अपने चेहरे की चमक देख नहीं सकती।
0: एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर प्लीज, थिंक ऑफिस प्लीज। श्योर। वैसे आंटी डॉक्टर ने की क्या?
1: डॉक्टर्स तो पूरी गारंटी देंगे ने बेटा, पर साड़ी सोसाइटी च हाई डोनेशन का जज्बा ही नहीं है लोगों च।
0: एक्चुअली आंटी मुझे लगता है कि साड़े लोग बहुत वेलमिंग है, इस करके ये गल को ज्यादा जोर नहीं पड़ सके।
2: तुसी सही कह रहे हो ज्योत जी, असी लोग तो बस पर लोग सुधारण ते ज्यादा जोर देने हैं, ये वाला लोग भावे जिन्ना मर्जी खराब चल रहे होवे।
1: देखो ना रोजाना किनिया मौतां हुंदियां ने, पर उन्हां दा शरीर अग दी जां मिट्टी दी भेंट चाह जांदा है बस।
2: फिर मम्मी आपां जिहो जी आ ठीक आ, अपने स्वार्थ लिए किसी दानी सज्जन दे मरण दी अरदास करिए।
0: वैसे ऑपरेशन दा खर्चा कितना होएगा?
1: ऐही कोई लगभग।
2: पैसे दी चिंता तुसी ना करो, पैसा तो है, नहीं होएगा तो मिल जाएगा, पर असल मुद्दा तो सही डोनर मिलन दा है। डॉक्टर्स कई हैगे ने पैसे लेके अखां दा, किडनी दा इंतजाम करना ने, पर मैं सोचती हूँ कि अंग मुल लैण नाल डॉक्टरी पेशे की पवित्रता में कलंक लगता है, तो मैं इस करप्शन की हिस्सेदार नहीं बनना चाहती।
0: ओह माय गॉड, सोसाइटी की बेहतरी लिए उसी सारी उम्र रोशनी के बगैर

0: कॉर्निया ट्रांसप्लांट तोड़ा की तरह।
1: अच्छा मेरा कॉर्निया दोनों ऐसा श्योर
0: और नहीं के मेरा सही दस चलो तेन में काम मिल गई अखर में रोशनी वापस आ गई तो सब तो पहला की देखना चाहेगी
1: छोटे सपने ना दिखाओ
0: नहीं नहीं नहीं फिर भी दस दस
1: फिर भी हाँ थोड़ी पेंटिंग्स स्केचेस लैंडस्केप्स है ना इंटरेस्टिंग मतलब
0: उन्होंने या मम्मी ने
1: देखो तुसी तो जीरो जी है और जीरो होगी तो मम्मी भी पर कला ते तो कोई स्नेही नजर फेरे तो वो खेड़ उठती है ना एक जिंदगी वांग
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत सही क्या बहुत सही क्या
1: वैसे तुसी आज कुछ बोल रहे हो
0: मैं पता नहीं बोल रहे ओहो कदा भूल गया मैं भूल गया के की बोले
1: की बोले दसो मैंने आज मेरा बर्थडे है जोत तो लिया मेरा बर्थडे क्या
0: ओ माय गॉड मैं कदा भूल गया मैं भूल गया तेरा बर्थडे गिफ्ट ला क्या
1: पक्का
0: ओके पक्का बिल्कुल तैयार रखी कर सर मेरा बर्थडे गिफ्ट सब तो स्पेशल होएगा
1: Really?
0: I mean it. Wait a
1: minute. Okay, John, I'm waiting. Special birthday gift, wow.

0: तू जाग रही है बेटा?
1: हाँ मम्मा, जाग रही हूँ। मम्मा फोन देखियो किधर, देखो जो जोड़ता हुआ है ना, क्या देना सो गई है।
0: अच्छा कह रही। हेलो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी जी कदो हुई अद्धी रात नू? ठीक है कोई गल नहीं, असी हुणे ही आए। जी हाँ असी हुणे आए।
1: की होया मम्मा?
0: की कहिंदे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहिंदे कि कोई फ्रेश केस आया है, चल जल्दी कर, आपां हुणे ही जाणा है, छेती उठ मैं तैयारी कर लां।
1: मम्मा आज जोत ने चंगा नहीं किया, मैं एवं हंसते हंसते उसे तो बर्थडे गिफ्ट की फरमाइश की कीती, वो ऐसा दौड़िया कि मुड़ के ही नहीं आया, ना कोई फोन किया, थे वो आप भी पता नहीं कितने है। आ जाए सही हूं, मैं भी नहीं बोलना उसके नाल।
0: ओहो बेटा बेगाने बेगाने ही होंगे ने, तुम कितनी बार तो समझाया, तो छड़ परा नहीं तो ना सही, उठ जल्दी कर आप चलिए देर हो रही है।
1: जी मम्मा।

0: नहीं सकता। पूरे एक महीने बाद कविता की मामी ने मेरी जेब चो निकलिया था कविता पढ़ के सुना। जब वो मैनू लीला प्रवाही ने कोस रही सी, इतने सारे झड़क लेने तो बाद कविता चुपचाप सुनती रही। अपने सारे आखिरी साग कट्ठे करके लिखिया सी उस लिए। उस तो बाद मेरा शरीर मजबूत मिट्टी हो चुका सी।
1: बस मम्मा बस, ना नहीं सुनना चाहती मैं उस जोत का। चुप कर जा कविता, हले सुन ध्यान नाल। रोना हिलना तड़पना तेरे लिए अजे मना है। मैं तेरे को बहुत लुका के रखिया बेटा, पर हुण मेरे सबर दा बंद टूट गया। आज मैं वो राज खोलन लगी हां। सुन चिट्ठी जो तेनू अपनी अखां डोनेट करन वाले दी जेब चो मिली। प्यारी कविता,
0: अपना सारा वजूद इकट्ठा करके लिख पा रहा। कविता मुझे साथ रहने जा रहा।

0: 정말
1: 죽겠지.

6.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:30 बज चुके ने। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: आजो बल साहब आजो बचाओ आजो
1: बड़िया राम जी जय हिंद जी
0: जय जी जय जी बल साहब बचाओ की हाल चाल तेडा
1: हाल चाल बाबा वधिया चढ़दी कला तुसी सुनाओ
0: हाल चाल तगड़ा देखो जिदा अज समा जेड़ा है
1: हां जी
0: जिदा हुंदा एक तक जानकारी
1: अच्छा जी
0: एक जरूरत तो ज्यादा जानकारी
1: जी
0: जानकारी होना
1: हां जी
0: ये बहुत बढ़िया चीज है
1: ठीक है जी
0: और जानकार होना ये भी बहुत बढ़िया चीज है
1: हां जी
0: और जानकारी रखना हाँ ये भी बहुत बढ़िया चीज है
1: ठीक है जी
0: पर जदों इन्हां दे अगे बहुत लग जांदा है
1: हां जी
0: फिर किते ना किते ओहो चीज साडे मानसिक स्तर ते भी
1: हां जी
0: बौद्धिक स्तर ते भी हर स्तर दे उते ओहदा जिहड़ा बिगाड़ पैणा शुरू हो जांदा है
1: ठीक है जी
0: क्योंकि जिदा अज समा है साधना दा
1: हां जी
0: अलग तरह के साधन है अलग तरह की जानकारी दे सुनने है क्योंकि मोबाइल दे विच सारा कुछ आ गया
1: हाँ जी
0: हर जानकारी जेड़ी है
1: जी
0: वह सही होवे ये हो नहीं सकता
1: हो नहीं सकता जी
0: जानकारी देने वाला सही होवे ये भी हो नहीं सकता
1: जी
0: जानकारी सही होवे इदा पहले के
1: सही गल जी
0: सो इस करके क्योंकि ताडे सामने जो आ रहा है
1: हाँ जी
0: ओदे परख निरख और परचोड़ कि सही है कि गलत है
1: हाँ जी
0: वो सिर्फ ताडे हाथ च है
1: मसाला है ही ना जी सोशल मीडिया से तुसी गल कीती है भी उन्हू परखिया नहीं जा सकता
0: हाँ
1: दूजा ओदे नाल जेड़ा एक माइक संकल्प जेड़ा जुड़ गया पैसा जुड़ गया
0: हाँ
1: ओदे नाल हरेक बंदे नू है भी जिन्नी जानकारी मेरे कोल हैगी आ उन्हू मैं उधार चढ़ा के झूठ मूठ नाल तथ जेड़े आ ला के उन्हू पेश करा ताकि वध तो वध जेड़ा पैसा बने ओदे चक्कर जेड़ी गलत जानकारी आ ओह आम लोकां तक पहुंच रही आ जेड़े कि उन्हू बिलकुल सच मान रहे है
0: सच मान रहे है
1: जी
0: और इथे ही जेड़ा है आके क्योंकि ए जेड़ी गलत जानकारी है समाज नू गलत पासे लेके जा रही है
1: नीम हकीम खतरा है जान
0: है वो बिल्कुल बिल्कुल उदा दी गल है क्योंकि देखो आज तो थोड़ा समा पहला जदो सोशल मीडिया दा दौर नहीं सी
1: हां जी
0: ते उदो जेड़ी जानकारी साडे कोल पहुंचदी सी
1: हां जी
0: ओ पुणछाण करके आउंदी सी
1: सही गल है जी
0: और सही स्रोत तो आउंदी सी
1: बिल्कुल जी
0: सो अज क्योंकि हुण देखो इन्हां स्रोतां नू आपां बंद तां कर नहीं सकदे ना आपां बंद करवा सकदे
1: बिल्कुल जी
0: ए तां हुण शुरू हो गया
1: सही गल है
0: हुण जेड़ा है कि

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ।

0: ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਢੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕੰਗਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛਾਂਗਾ ਗੋਭ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਧੂੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਗਿਆਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧੂੜੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧੂੜਾ ਉਸ ਗੁੱਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੂਝਾ ਹੈ ਉਸ ਬੂਝੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਜੋ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੰਨੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, उसके ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस के खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।

0: की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से, दोपहर में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। सरिता बहन ने के सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए साथ भूमि की सेहत के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया गया, खेत बचाओ अभियान, और खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा, यदि किसान संतुलित खाद का प्रयोग करें, मिट्टी की जांच कराएं और वैज्ञानिक खेती अपनाएं तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की जो कृषि व्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो ऐसे में आज
0: खेत बचाओ अभियान के तहत संतुलित खाद, मृदा स्वास्थ्य जांच और वैज्ञानिक खेती द्वारा अधिक उत्पादन कैसे लें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव। आप वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल जी।
2: किसान भाई राम राम। फसलों के उत्पादन के लिए हमें मृदा का उपजाऊ होना बहुत जरूरी होता है, और जब मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है तो निश्चित तौर पे हमारे जो फसलों का उत्पादन गिर जाता है और उसकी वो गुणवत्ता नहीं रहती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, खेत बचाओ अभियान। और खेत बचाओ अभियान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि संतुलित खाद का उपयोग, मृदा स्वास्थ्य की जांच और वैज्ञानिक खेती द्वारा किस तरीके से किसान भाई आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सर।
2: तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो खेत बचाओ अभियान चलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: जैसे कि भारत सरकार द्वारा इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के किसानों को उनके खेत में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जागरूक करना, उनको समय समय पे गांव-गांव में जाकर के कैंपेन करना, जो भी है कि मिट्टी में देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें असंतुलित हो गई है, जब तक हम अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराएं जिससे कि उनको पता नहीं चलता कि उस खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है। और किसान भाई जो भी अगली फसल ले रहे हैं बिना जांच के अनुसार अंधाधुन अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बैलेंस रूप में नहीं है, इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने खेत की मिट्टी के बारे में जाने, क्योंकि मिट्टी से ही जो भी हम सुबह से शाम तक भोजन लेते हैं 80-90% कहीं ना कहीं वो मिट्टी से आ रहा है। लेकिन मिट्टी में ये भी है कि मिट्टी दिनों दिन हमारी अधिक से अधिक उसमें रासायनिक खादों का उपयोग करने से उसमें मिट्टी का भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि उत्पादकता में कमी आ रही है, साथ ही साथ जो गुणवत्ता युक्त उसमें प्रोडक्शन है वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश की अपनी मिट्टी है उसमें समय समय पे किसान, उसमें वैज्ञानिक उनके गांव तक जाएं और उनके खेत के बारे में जो भी है मिट्टी की समस्या उसके बारे में किसानों को जागरूक करें।
2: तो आप जब गांव में जाते हो तो किसानों को क्या क्या बताते हो?
3: जैसे कि हम लोग जब गांव-गांव में जाते हैं, हम

0: दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से हैं, तो हम लोग जो दिल्ली के क्षेत्र के गांव हैं वहां गांव गांव जा करके अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उनको किसानों को जागरूक करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि यहां दिल्ली का क्षेत्र में मोस्टली आपका सलाइन वाटर है, तो सलाइन वाटर होने के कारण जो मिट्टी है किसान की उसमें भी आपका अधिक से अधिक इरीगेशन करने से खरापन आ गया है, लेकिन किसान को पता नहीं चल रहा है कि इसमें मिट्टी का हमारे उनके पीएच मान क्या है या उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना परसेंट है या उसमें जो भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें में कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना है और कौन कौन से उर्वरक देना है, तो इसके बारे में किसान को जागरूक कर रहे हैं। एक चीज और है कि किसान भाई का खेत खाली होता है, जनरली आपके गर्मी के मौसम में लगभग सभी किसानों का खेत खाली रहता है, तो उस दौरान उनको अवेयर करते हैं कि अपने खेत की मिट्टी की जांच समय समय पर जरूर कराएं, जिससे कि उनको पता चले कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है।
1: तो मिट्टी की जांच किस तरीके से कराएं और इसका क्या महत्व है?
0: जैसे कि किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों इस दौरान आपका खेत खाली है तो जनरली आपका एक एकड़ खेत है तो एक एकड़ खेत से आप 8 से 10 पॉइंट से मिट्टी का नमूना लेते हैं, एक खेत से चारों तरफ से एक एक मीटर बॉर्डर छोड़ करके जिगजग तरीके से लेते हैं और फसलों के अनुसार गहराई रखते हैं। जैसे सीरियल्स क्रॉप है या सब्जियां हैं जो भी फसलें लेते हैं इसमें 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ से मिट्टी का नमूना लेकर के 8 से 10 पॉइंट से उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसमें अपना नाम गांव आधार कार्ड नंबर ये सब डिटेल जानकारी लेकर के आप नजदीकी अपने कृषि विज्ञान केंद्र में दे सकते हैं, साथ ही साथ या नजदीकी कोई सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहां दे सकते हैं, जिससे किसान भाई को उन मिट्टी में कौन सी समस्या है उसका पता चल जाता है। जनरली एक किसान भाई इसमें एक चीज और है कि मिट्टी का सैंपल लेते समय कुछ किसान भाई सावधानियां रखते हैं, जैसे कि कभी भी मिट्टी का सैंपल खाली खेत से लेना चाहिए या जो भी यंत्र यूज कर रहे हैं आपका वो जंग खाया नहीं रहना चाहिए या जो भी पॉलिथीन आप ले रहे हैं वो आपका साफ सुथरी होनी चाहिए या आपके जैसे खेत खाली होने के बाद कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गोबर की खाद खेत में बिखेर देते हैं तो उसके बिखेरने से पहले मिट्टी का नमूना सैंपल लेना चाहिए या आपके खेत में कोई पेड़ है तो उसके पेड़ के नीचे से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। अगर आपका किसान भाई प्रॉपर अगर नमूना लेने का तरीका सही है तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा, जिससे आपको भली बात है अपने खेत की मिट्टी के स्टेटस पता चलेगा जिसमें अगली फसल के लिए आप उसका उचित प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, लेकिन बीच में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने थे, ये किस तरीके से उपयोगी हैं किसान भाइयों के लिए?
0: जी, जैसे कि भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि देश के जितने भी किसान हैं उनके खेत की मिट्टी की जांच करके उनका जो मिट्टी का स्टेटस है मिट्टी का जो हेल्थ है उसका एक रिपोर्ट के माध्यम से देना, जिससे कि किसान उस तरीके से खेत में उनकी मिट्टी का जो गुण है जैसे भौतिक गुण में आपका उनका पीएच मान अम्ली है या क्षारीय है या उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना परसेंट है उसका एक्चुअल पता चलता था और साथ ही साथ आपका जैसे उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना है, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है और साथ ही साथ आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक कॉपर आयरन बोरान मैंगनीज आदि का पता करके उसका टेस्ट के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान को उनके मिट्टी में जो स्टेटस है न्यूट्रिएंट्स का उनको बताना और साथ ही साथ जो भी वो किसान भाई फसल ले रहे हैं उसके अनुसार उसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि आपको अगली फसल जो भी नेक्स्ट ले रहे हैं उसमें आपको इतनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, साथ से साथ आपका जैविक खाद का इतनी मात्रा में उपयोग करना है, जो भी है वो संतुलित तरीके से उपयोग करना है, जिससे कि इस तरीके से आप अच्छी तरह प्रबंधन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो मिट्टी की जांच होती है उसमें क्या कुछ गिने हुए पोषक तत्वों की जांच की जाती है या जितने भी आवश्यक फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व होते हैं सभी की जांच हो जाती है?
0: जैसा कि इसमें जो भी है अब पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है
1: जी,
0: लेकिन जनरली आपको देखा जा रहा है कि तीन तो नेचर से किसान भाइयों को मिल जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी जो 14 पोषक तत्व हैं वो किसान भाई को किसी न किसी रूप में रासायनिक खाद के रूप में या जैविक खाद के रूप में देना पड़ता है। इसके लिए जो भी है सॉइल टेस्ट में ये सब चीजें टेस्ट होती है, जैसे आपका जो प्राथमिक पोषक तत्व है, सेकेंडरी पोषक तत्व है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सभी जांच जरूरी है, जिससे कि आपको पता चले कि उनके खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि किसान भाई डीएपी के बाद डीएपी भी दे रहे हैं, लेकिन डीएपी में जनरली आपका 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध है लेकिन किसान को ये नहीं पता है कि इसमें फास्फोरस उपलब्ध है, नेक्स्ट फसल में कितनी मात्रा में देना है तो वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो इसलिए जब तक वो अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते तब तक उनको पता नहीं चलता कि आपको अगली फसल लेनी है तो कितनी मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है।
1: मेरा सब मिट्टी की जांच कराने के बाद

0: तरीके से उर्वरकों के संतुलित उपयोग में मदद मिलती है।
1: जैसे कि मिट्टी के जांच हम जब कराते हैं तो उसमें सभी उर्वरकों के बारे में, जैसे क्या होता है कि जो भी फसलें होती हैं उसकी अलग अलग रिकमेंडेशन होती है फर्टिलाइजर की, जैसे तिलानी है तो उसमें सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें विस्तृत जानकारी लिखी रहती है कि जो भी आप दलहन या तिलहन ले रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितनी मात्रा में देना है या फॉस्फोरस कितनी मात्रा में देना है या आपको पोटेशियम कितनी मात्रा में देना है और सल्फर कितनी मात्रा में देना है, साथ ही साथ आपका जो भी जैविक खाद है कितनी मात्रा में देना है, वो विस्तृत जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड पे लिखी रहती है। अगर किसान उसको पढ़ करके अच्छी तरह से प्रबंधन करें तो वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है।
0: डॉक्टर साहब, मिट्टी की जांच करा के, पानी की जांच करा के उस तरीके से किसान भाई अपनी लागत में भी कमी ला सकते हैं।
1: जी, जैसे कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि जो भी किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसका उचित प्रबंधन खाद उर्वरकों का और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जो भी उसमें सिफारिशें दी गई है, तो देखा जा रहा है कि 6-7% उनको उत्पादन में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ लागत कास्ट में कमी हो रही है। जैसे कि किसान को पता नहीं है कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, अगर मिट्टी जांच के उपरांत उनको पता चल जाता है कि इसमें इतनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है और अलग से इतनी मात्रा में देनी है, तो उस हिसाब से किसान को काफी तक फायदा मिल रहा है।
0: डॉक्टर साहब, क्या जैविक खाद है, गोबर की खाद है, इसके प्रयोग से संतुलित उर्वरक प्रबंधन में मदद मिलती है?
1: जी, जैसे अगर जिस किसान भाई के पास जैविक खाद की उपलब्धता अच्छी तरह है तो वो अधिक से अधिक जैविक खाद का, जैसे गोबर की खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, या वेस्ट करके उसको डिकम्पोज करके जो भी है जैविक खाद बना सके उसका उपयोग करने से किसान लाभ ले सकता है, या जिस किसान भाई को इसकी उपलब्धता कम से कम है तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में कुछ भाग आपका जैविक खाद के रूप में, कुछ भाग रासायनिक खाद के रूप में मिश्रित करके देने से उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और कहते हैं कि अब हमारे देश में जो मृदा है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होते जा रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसान भाई कौन सी फसलें लें, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, कौन से खाद डालें?
1: जैसे कि देखा जा रहा है कि जो जनरली आप पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ही कमी है, जनरली 80% मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। अगर इसकी मात्रा हमें बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक गोबर की खाद का उपयोग करें, अधिक से अधिक केचुआ खाद का उपयोग करें, या आपका फार्म का कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका उपयोग करें, या जिस किसान भाई को ये भी उपलब्ध नहीं है अगर है तो उसके लिए किसान भाई इस दौरान अपने खेत में जैसे ढांचा लगा सकता है, ढांचा लगाने के बाद अपने खेत में बिजाई करने से 50 दिन के अंदर खेत में पलटाई करने से उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ अगली फसल के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, अगली फसल में आप यूरिया की मात्रा भी कम दे सकता है, इससे भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया जा सकता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो इसका आपस में किस तरीके से संबंध है?
1: जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य दोनों का एक खेती बाड़ी में अच्छा महत्व है। जैसे कि जल से ही हमें इरिगेशन वाटर का भी इफेक्ट काफी है, जैसे भारत में देखा जा रहा है कि कहीं कहीं सलाइन वाटर हो गया, खारा हो गया, तो उससे के कारण भी हमारी मिट्टी खराब हो रही है। जनरली हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है, तो जिससे कि वो किसान भाई चाहते हुए भी अपनी सभी फसल नहीं ले सकता। जैसे खारे पानी का एक ICR का संस्थान है, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, उनकी बहुत सारी वैरायटी भी डेवलप है खारे पानी पे, तो उसको भी किसान अपने पानी की जांच करा करके पानी की जो गुणवत्ता के अनुसार फसल का चयन कर सकता है। जैसे उनकी बहुत सारी वैरायटी है, मस्टर्ड की भी है, और जैसे CS60, CS64, CS62, और इसी तरह आपकी वीट की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि KRL10, KRL19, साथ ही साथ उनकी संस्थान की एक वैरायटी है करनाल चना 1 के नाम से, इसी तरह और भी वैरायटी है अलग अलग फसलों की। लेकिन उसमें मोस्टली किसान भाई को अपने खेत में जो भी आपका पानी उपयोग कर रहे हैं उसका अच्छी तरह वो किसान भाई को जांच कराना पड़ेगा। जांच कराने से पता चलता है कि जो पानी की गुणवत्ता है इसमें कौन सी फसल होगी या नहीं होगी, तो इसलिए पानी और मिट्टी का संबंध एक साथ ही हम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि पानी खराब होगा तो कहीं ना कहीं पानी देने से मिट्टी भी हमारी खराब होती है, तो इसलिए दोनों का अच्छा होना फायदेमंद है किसान के लिए।
0: डॉक्टर साहब, अब क्योंकि खेतीबाड़ी पुराने तरीके की नहीं है, अब आधुनिक तकनीक भी आ गई है, किसान भाई ड्रोन है, सेंसर है, मोबाइल ऐप का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे खेती में क्या सुधार होने की संभावना है?
1: इससे जैसे किसान को त्वरित समाधान हो जाता है, जैसे सेंसर बेस, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जैसे कि सेंसर बेस है, जैसे मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, तो इसके आधार पे किसान को तुरंत पता चल जाता है कि इतने % मॉइस्चर की कमी है, तो सेंसर से ही किसान को पता चल जाता है, तो उसके आधार किसान सिंचाई के प्रबंधन करता है। कुछ सेंसर

0: अभी तो आपके जो फर्टिगेशन का भी उपयोग हो रहा है, जिसमें कि फर्टिलाइजर की का भी देखा जा रहा है, जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या है या मिट्टी का टेक्सचर स्ट्रक्चर, जो भी ये फिजिकल जैविक भौतिक गुण जो इतने भी होते हैं, ये सब उससे पता चल जाता है जैसे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है या मिट्टी की जो भी संरचना है, इसके अनुसार हम कैसे किसान को फायदा दे सकते हैं।
1: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खेती में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जो जैविक उर्वरक है देसी खाद का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरकों को का प्रयोग कम करें।
0: किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे सरकार द्वारा एक इस समय अभियान भी चल रहा है खेत बचाओ अभियान, उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान को अवेयर करना कि जो भी है वो अधिक से अधिक खाद दे रहे हैं खेत में, और उसका भी देखा जा रहा है कि असंतुलित मात्रा में दे रहे हैं जिसका बैलेंस नहीं है। जैसे खेत में हमें जिंक सल्फेट की जरूरत है लेकिन किसान डीएपी दे रहा है, ये चीजें किसान को कैसे पता लगे? किसान जब तक अपने खेत की मिट्टी की जांच न कराए, तो किसान जो भी उर्वरक प्रबंधन करे अपने खेत की मिट्टी की जांच करा करके ही वैज्ञानिक विधि से वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के ही उसमें संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन करे, जिससे कि किसान भाई अगर संतुलित उर्वरकों का बैलेंस रूप में करते हैं तो उनको अधिक से अधिक लाभ निश्चित ही मिलता है।
1: जी बिल्कुल, उससे आपकी लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन भी आपका अच्छा होगा और जो आपकी मृदा है उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डॉक्टर मुजेश यादव जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खेत बचाओ अभियान के तहत संतुलित खाद, मृदा स्वास्थ्य जांच व वैज्ञानिक खेती द्वारा अधिक उत्पादन। डॉक्टर बृजेश यादव वैज्ञानिक भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से जानकारी दे रहे थे और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री नंदन लाल।
3: संध्या बहन, देखिए विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफी परिवर्तन आए, साथ ही आए नए नए कृषि यंत्र और खेती के आधुनिक तकनीकें, लेकिन साथ साथ ही देखिए यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग द्वारा हमारे किसान भाइयों की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी कमी आ रही है और साथ ही उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज FICCI फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में भारत अभिनव फसल पोषण सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जानकारी देते हुए प्रोफेसर एस महेंद्र देव अध्यक्ष प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने बताया,
4: यू नो स्टिल वी डोंट नो द देयर इज डेफिशिएंसी इन दिस मंथ बट वी हैव टू सी जुलाई ऑगस्ट रेन्स and then and government has contingency plans for each district. We have plans and also crop diversification and other things, so that way I think we are prepared for that El Nino impact. We have we need 7-8% growth for Viksit Bharat, and we need investment for that, so private sector investment is equally important and also export growth important. So the Prime Minister has mentioned about Atmanirbhar Bharat. That is equally important. We have done many reforms, over the years, and that will continue in the next years to come. So the Atmanirbhar Bharat doesn't mean import substitution, but we are basically saying that the Prime Minister, the competition should increase and the quality of the products so that we can export more. So, and also we have demographic advantage and technology improvement, skills. So all these things will lead to Viksit Bharat by 2047.
2: इसी सम्मेलन में जानकारी देते हुए डॉ पीके सिंह, कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने बताया,
5: जहां तैयारी की बात है तो उसमें यह है कि IMD से जैसे जैसे सूचना आ रही उसके आधार पे कंटीजेंसी प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटीजेंसी प्लान्स बन गए हैं सबके, आज सबको सेंसिटाइज भी कर दिया गया है सभी स्टेट्स को, और तो उसके आधार पे आगे अब जहां जहां जैसे बरसात की स्थिति होगी वैसे वो कंटीजेंसी प्लान लागू होंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। 2015 में जो एल नीनो आया था ऑलमोस्ट वैसा ही कंडीशन है, तो तब से हमारे इरिगेशन की सुविधाएं बहुत बढ़ी हुई हैं देश में 10 साल में पिछले, तो माई स्वीट का तो भंडार बहुत अच्छा है, पल्सेस में भी चना इस बार बहुत अच्छी फसल थी उसका भी भंडार बहुत अच्छा है, और बाकी जहां कमी होती है कहीं इम्पोर्ट करने की जरूरत होगी तो इम्पोर्ट किया जाएगा। पूर्व में पहले भी इम्पोर्ट होता रहा है, इस बार भी अगर जरूरत पड़ेगी तो होगा। और अच्छा ये है कि अगर सूखा की स्थिति थोड़ा सा मानसून डिले होता है तो पल्सेस की ओर शिफ्ट होता है किसान, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन कम पानी में होने वाली फसल है, तो श्री अन्ना है, पल्सेस है, इसका एरिया अभी वो थोड़ा बढ़ा हुआ भी दिख रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल इनका एरिया अभी तक बढ़ा हुआ है, तो खासतौर से मूंग का जैसे राजस्थान में काफी एरिया बढ़ा हुआ है, ऑयल सीड में भी कुछ एरिया बढ़ा है। तो लेट अस सी।

0: है तो अब सेकेंड अनुमान अब इनका 27-28 तारीख तक आएगा जुलाई के रेनफॉल का। अभी तो ठीक है, अभी 40% कमी है बारिश की पूरे देश के हिसाब से देखें, बट लेट अस सी क्या होता है। हम लोग जो खेत बचाओ अभियान कर रहे हैं उसका बेसिक एम यही है कि आप जो है इस समय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर बढ़ें किसान, और साथ में आप अगर ये देखें कि जहां एक्सेस डाइवर्जन हो रहा था फर्टिलाइजर्स का उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि वो किसान भी उसमें आगे आए। जितना जरूरत है सॉयल हेल्थ कार्ड सबके पास है उसके आधार पर फर्टिलाइजर का प्रयोग करें तो कमी नहीं है। अगर आप सीरियल से पल्सेस को शिफ्ट करते हैं अपने आप फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कम होता है। कहीं अगर 125 केजी नाइट्रोजन की जरूरत होती है मक्के में तो 12.5 किलो केवल चाहिए तूर में या 25 केजी चाहिए सोयाबीन में। तो इन दैट वे अगर डाइवर्सन होता है उस तो कोशिश ये है कि श्रीअन्ना की ओर पल्सेस की ओर हमारे जो मिशन चल रहे हैं तीन दलहन मिशन है तिलहन मिशन है और फिर आपका कॉटन मिशन भी शुरू हो गया है तो कोशिश है कि इनकी ओर डाइवर्ट करें किसान। और जो हैवी न्यूट्रिएंट लेने वाले हैं जैसे राइस है उसमें पानी भी ज्यादा चाहिए न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए तो उधर से डाइवर्जन हो इन फसलों की ओर। तो लोकेशन स्पेसिफिक हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने भी ब्लॉक लेवल पे कहां पानी की क्या सुविधा है उसके हिसाब से फसल का चयन होता है। जो कृषि धनधान योजना है उसमें 100 जिले जो थोड़ा पिछड़े रह गए हैं प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से या क्रेडिट या अन्य चीजों के हिसाब से तो उनको आगे बढ़ाने की भी कोशिश चल रही है तो उन सभी के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो
1: चिंता बहन ये तो जानकारी रही। और देखिए इस समय भाई देखिए अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में जो तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए भाई खेती में अगर बात करें तो भाई मौसम का काफी रोल होता है सहयोग बिल्कुल। और इस समय देखिए खरीफ फसलों की तैयारी का मुख्य समय है, बारिश को देखकर आप जल्दबाजी न करें बुआई, खेत की नमी और अगले 5 दिन का पूर्व अनुमान लेकर ही आप काम करें, मानसून की प्रतीक्षा करें। और भाई उत्तर भारत और मध्य भारत की बात करें तो मानसून की प्रक्रिया चल रही है, मिट्टी में पर्याप्त नमी कम से कम 4 से 6 इंच होने पर बुआई करें। दूसरा बीज अगर जहां से भी आप लें तो उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित न हो तो उपचारित अवश्य कर लें।
2: जी हाँ, और पहली क्योंकि अभी भाई जून के अंतिम समय पड़ाव पे हैं हम और पहली बारिश के बाद जल भराव न होने दें क्योंकि देखा जाता है कि जून के अंत में अचानक तेज बारिश हो सकती है। यदि खेत में पानी लंबे समय तक खड़ा रहे तो जड़ें सड़ सकती है, पौधों को ऑक्सीजन कम मिल सकता है, रोग और कीट बढ़ सकते हैं, अंकुरण जो है वो खराब हो सकता है। तो बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि खेत के चारों तरफ छोटी नालियां बनाएं, खेत को समतलीकरण करें, पानी निकासी की आप उचित व्यवस्था रखें और संतुलित खाद का प्रयोग करें तो फसल की अच्छी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा।
1: देखिए साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो फसल का आप चुनाव करें तो अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार कम अवधि वाली उन्नत किस्मों का ही चयन करें। और साथ ही वही देखिए फसलों की पैदावार गुणवत्ता मौसम के तापमान नमी और बारिश पर जैसे कि हमने बताया काफी निर्भर करती है, जलवायु के अनुसार खेती करने से पानी और उर्वरक दोनों की बचत होती है। और साथ ही देखिये भाई इस मौसम में जो खरपतवार काफी हो जाते हैं तो भाई आप खरपतवार नियंत्रण का भी पूरा ध्यान रखना है।
2: जी हाँ, इन बातों का अगर पालन आप करेंगे तो जून के अंत में जो बोई गई खरीफ फसलें ना जैसे धान बाजरा मक्का मूंग और अरहर ये बहुत अच्छे उत्पादन आपको दे सकते हैं।
1: देखिए सरिता बहन अब बारी है कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल 5:10 पर लोक रंगनी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे। वहीं 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। और साथ ही वही योजना की अगर बात करें तो योजना की जानकारी देंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में कृषि समाचार दर्शन होगा। साथ ही योजना की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी देंगे और हरियाणा की चुनिंदा मंडियों के बाजार पार्क के बारे में जानकारी देंगे। और भाई ये था हमारा आज का कार्यक्रम, आपको कैसा लगा अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया में अवश्य भेजिए। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली।
2: जी और आप हमें मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं अपने सुझाव, हमारा मेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 होने को है। आइए सुनते हैं गजलों एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी एवं साथी की आवाज में ये कव्वाली।

0: सुन रहे थे गजलों एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। 1 जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। महापौर प्रवेश वाही ने आगामी मानसून की तैयारियों के लिए अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट कर दिया है जारी। और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
2: ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक मौजूद सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक में इसकी घोषणा की।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतिम रूप दी गई दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि पहले पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था, जिसकी सीमा अब बढ़ा दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से लाखों परिवारों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन आवासों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और वंचित परिवारों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है।

0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बात की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया।
1: प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में शासन में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन प्रक्रिया केंद्रित मॉडल से परिणाम उन्मुख हुआ है। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं अमीशा।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन अब 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से मैट्रिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी है।
3: नेफेड ने NCCF के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन न लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, यह सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने यह बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है और फिर ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आगामी मानसून सीजन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ बनाना था। साथ ही मानसून के दौरान नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इस दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित जलभराव से संबंधित अंतर विभाग

0: ये मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे नालों की गाद निकासी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि मॉनसून के दौरान प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी पंप, मोटर, डीवॉटरिंग उपकरण तथा अन्य आपातकालीन मशीनरी समेत सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह तैयार और कार्यशील अवस्था में रखा जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में स्टॉप डायरिया अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को डायरिया से होने वाली बीमारियों और मौतों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह अभियान आगामी 31 जुलाई तक पूरे राजधानी में चलाया जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नवनिर्मित मॉडल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें एलोपैथी, आयुष, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धति को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भकालीन मधुमेह और गर्भावस्था तथा प्रसवोत्तर सेप्सिस के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की तथा क्लिनिकल एल्गोरिदम का विमोचन भी किया। नए क्लिनिक एल्गोरिदम स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे और डॉक्टरों, नर्सों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, संक्रमण और सेप्सिस जैसे उच्च जोखिम वाली स्थितियों की समय पर पहचान और प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, पोषण, समय पर उपचार और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नवजीवन विहार स्थित रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकेंद्रीकृत खाद निर्माण इकाइयों, स्रोत स्तर पर कचरा पृथककरण व्यवस्था और स्थानीय वर्षा जल संचयन प्रणाली का भी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यह क्षेत्र राजधानी में जीरो वेस्ट कॉलोनी के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि समुदाय के नेतृत्व में हुआ यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ और वेस्ट टू वेल्थ पहल के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने RWA और स्थानीय निवासियों के प्रयासों की भी सराहना की। राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित था। दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद धूल भरी आंधियों के साथ तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। 1 जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त। नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी
1: खेलों का आईना।
0: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी युवा साथी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार।
0: और हमेशा आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन फिटनेस, समावेशिता और उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के मूल ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
2: जी बिल्कुल अजय जी, वर्ष 2026 के आधिकारिक अभियान में जो इसका एक मोटो है, जो लोगो है, वो है आप यह कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक मोटो दिया गया है जो बेसिकली ये पूरा हमें एक फिटनेस की तरफ एक बढ़ावा देने का प्रोत्साहन करता है।
0: वही IOC के नेतृत्व में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थन से शुरू की गई इस वर्ष की पहल का उद्देश्य है आत्मसंदेह पर काबू पाए, युवाओं को उनकी फिटनेस यात्रा में यह कठिन पहला कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है। क्योंकि जब भी कोई फिटनेस की शुरुआत करते हैं या कोई एक्सरसाइज, योगा, किसी भी तरह की कोई शारीरिक श्रम की जब बात होती है तो पहले एक दो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो उसके बाद शरीर में दर्द भी होते हैं, कई बार हमारा फोकस, हमारी जो मन की दशा होती है वो ऐसी हो जाती है कि मन करता है कि छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है फिटनेस करने की। लेकिन उसी को सामने रखते हुए आत्मसंदेह पर काबू पाना ओलंपिक दिवस का मोटो है।
2: जी बिल्कुल, और ओलंपिक दिवस हमें यह भी सिखाता है कि खेल केवल पदक जीतने या रिकॉर्ड बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, मित्रता और सम्मान जैसे मूल्यों का विकसित अपने अंदर विकसित करने का भी यह एक जरिया है।
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ओलंपिक का एक मूल उद्देश्य भी रहा है। और ओलंपिक दिवस के बाद अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, और खास रिपोर्ट बनाई है हमारी युवा साथी अमीषा पटेल ने।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। कल कई बड़े मुकाबले खेले गए जहां रिकॉर्ड्स बने, टीम्स ने नॉकआउट की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए और फैंस को कई यादगार पल देखने को मिले। वहीं आज कुछ और अहम मुकाबले होने वाले हैं जो अगले दौर की तस्वीर और साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के मुकाबले की, जहाँ स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। विजय के मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। जीत के हीरो रहे लियोनेल मेसी, जिन्होंने मैच में दोनों गोल किए। अड़तीसवें मिनट में किए गए उनका पहला गोल वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड लेकर आया, जिसके साथ मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद दूसरा गोल करते हुए उन्होंने अपने वर्ल्ड कप गोल्स की संख्या 18 तक पहुंचा दी। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के लिए अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अगर ग्रुप जे के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अर्जेंटीना 2 मैचों में 2 जीत के साथ 6 पॉइंट्स लेकर टॉप पर बनी हुई है। वहीं ऑस्ट्रिया 1 जीत और 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दिन के दूसरे

मुकाबले में अर्लिंग हालैंड का जलवा एक बार फिर देखने को मिला, जहां नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात दी। हालैंड ने 2 गोल करके अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये नॉर्वे की लगातार दूसरी जीत रही है और इसी के साथ टीम ने भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर ग्रुप आई की स्टैंडिंग्स की बात करें तो फ्रांस और नॉर्वे दोनों ने अपने अपने 2 मैच जीतकर 6-6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और दोनों ही अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। बेहतर गोल मार्जिन की वजह से फ्रांस पहले स्थान पर है, जबकि नॉर्वे दूसरे नंबर पर बना हुआ है। वहीं सेनेगल और इराक अपने दोनों मुकाबले हार कर भी अब पॉइंट्स टेबल में पीछे हैं। वहीं दिन के आखिरी मुकाबले में अल्जीरिया ने शानदार वापसी दिखाई। ग्रुप जे के मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया। जॉर्डन ने शुरुआत में बढ़त जरूर बनाई, लेकिन अल्जीरिया ने जबरदस्त कमबैक करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ जॉर्डन टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जबकि अल्जीरिया की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा है। अगर ग्रुप जे की स्थिति की बात करें तो अल्जीरिया ने 1 जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं और क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ जॉर्डन बिना किसी पॉइंट के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है।

आज के मुकाबले के आज ग्रुप के और ग्रुप एल में चार महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे जिन पर दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर रहेगी। पहला मुकाबला पुर्तगाल वर्सेस उज्बेकिस्तान का होगा। यह महत्वपूर्ण मुकाबला टेक्सास के हस्टन स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों ही टीम्स के लिए ये मैच टूर्नामेंट के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि दोनों ही अपनी पहली जीत की तलाश में है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली पुर्तगाल को अपने पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 की बराबरी पर रुकना पड़ा था, जहां जोआओ नेवेस के शुरुआती गोल के बाद विसा ने स्कोर लेवल कर दिया था। इस निराशाजनक ड्रॉ के बाद रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम पर इस मैच में पूरे 3 पॉइंट्स लेने का काफी दबाव है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही फाबियो कानावारो की उज्बेकिस्तान टीम को अपने पहले मैच में कोलंबिया के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था, जहां अब उज्बेक ने अपनी टीम के लिए इतिहास का पहला वर्ल्ड कप गोल दागा था। उज्बेकिस्तान के लिए ये डू और डाई की स्थिति है क्योंकि एक और हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा कर देगी। इतिहास में पहली बार दोनों देशों की फुटबॉल टीम्स एक दूसरे के खिलाफ कोई ऑफिशियल मैच खेलने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप एल का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। थॉमस टुचेल के मार्गदर्शन में खेल रही इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 से एक शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें कप्तान हैरी केन ने 2 गोल दागे थे। वहीं दूसरी तरफ घाना ने भी अपने पहले मुकाबले में पनामा को 1-0 से हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए हैं, जहां क्लैब हिरेनकी ने 95 मिनट में हिस्टोरिक मैच विनिंग गोल दागा था। इस मैच में विजेता रहने वाली टीम के पास 6 अंक हो जाएंगे, जो उन्हें ऑफिशियल तौर पर अगले नॉकआउट राउंड यानी राउंड ऑफ 32 के बिल्कुल करीब पहुंचा देगा। इतिहास में पहली बार ये दोनों टीम किसी वर्ल्ड कप के कॉम्पिटेटिव मैच में एक दूसरे से टकराएंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें आपको कि अगर जूड बेलिंगम इस मैच में खेलते हैं तो वो महज 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए 50 कैप्स पूरे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। बात करें पनामा और क्रोएशिया की तो ग्रुप एल का ये एक बेहद थ्रिलिंग और डू ऑर डाई मुकाबला पनामा और क्रोएशिया के बीच कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में खेला जाएगा। मॉड्रिक की कप्तानी वाली क्रोएशिया को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 4-2 से निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ पनामा को भी अपने पहले मुकाबले में घाना से 95 मिनट में 1-0 से बेहद करीबी हार मिली थी। दोनों ही टीम्स के पास अभी तक 0 अंक है, जिसके चलते ये मुकाबला दोनों के लिए टूर्नामेंट में बने रहने का आखिरी मौका बन गया है। फुटबॉल इतिहास में दोनों देशों के बीच ये पहला ऑफिशियल फेस ऑफ होगा और पनामा जो अब तक वर्ल्ड कप इतिहास में यूरोपियन टीम्स के खिलाफ अपना सभी मैचेस हारी है, वो इस रिकॉर्ड को जरूर बदलना चाहेंगे। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक और हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो कि ग्रुप के की टीम्स कंबोडिया और डीआर कांगो के बीच मेक्सिको में खेला जाएगा। नेस्टर लोरेंजो के मार्गदर्शन में

रही कोलंबिया ने अपने पहले मुकाबले में उज़्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी, जिसमें स्टार फॉरवर्ड लुइस डियाज ने बेहतरीन गोल दागा था। वहीं दूसरी तरफ डीआर कांगो ने अपने पहले मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मजबूत पुर्तगाल टीम को 1-1 की बराबरी पर रोककर सबको हैरान कर दिया था। जहां युआने वीसा ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल दागकर अपनी टीम को एक कीमती पॉइंट दिलवाया था। और अगर आज डीआर कांगो इस मैच में कोई बड़ा उलटफेर करती है या मैच ड्रॉ खेलती है तो ग्रुप के की तस्वीर बेहद पेचीदा और रोमांचक हो जाएगी। दोनों देशों के बीच फुटबॉल इतिहास में यह पहला ऑफिशियल कॉम्पिटेटिव मैच होने जा रहा है। तो कल का दिन लियोनेल मेसी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के नाम रहा और आज सबकी नजरें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन, लुका मॉड्रिच और लुइस डियाज जैसे सितारों पर होंगी। कौन सी टीम नॉकआउट राउंड के और करीब पहुंच पाएगी, इसका जवाब मिलेगा आज के इन रोमांचक मुकाबले में।

0: एग्रेशन से खेलो और ये मत सोचो कि आगे कौन खेल रहा है, तुम अपना बस बेच दो।
1: तो अभी आगे एशियन गेम्स हैं, एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, तो तैयारियों को कैसे स्वरूप रहेगा? आपने कहा ना कि आप और बेहतर तैयारी करेंगे,
0: तो अभी जैसा हमारा क्या पता कैंप लगे, अभी तो कुछ आया नहीं, तो एज एन कैंप लगेगा तो कोचेस हमें और सिखाएंगे जहां हम लैक कर रहे हैं और हम अपना और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: हमने भारत की स्टार तलवारबाज सीए भवानी देवी से भी बात की और जानना चाहा कि यहां के जो प्रदर्शन से वो कितना सेटिस्फाई हैं और आगे जो योजनाएं हैं, आगे वाले कंपटीशन है, क्या तैयारियां चल रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब में उन्होंने कहा भी आज जैसे आपने कई कंपटीशन किया और टोक्यो ओलंपिक में भी आप खेली हैं, अभी लॉस एंजलिस के लिए क्या रोड मैप है और कैसी तैयारियों का एक स्वरूप रहेगा?
2: लॉस एंजलिस नेक्स्ट ओलंपिक्स ये भी मेरे को एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार मैंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, सेकेंड टाइम नहीं किया, तो अभी और नो जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग्स है, वो सब कुछ मुझे ठीक तरह से करके लॉस एंजल्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि फेंसिंग एक स्पोर्ट है, अगर मैं कल अच्छा खेला तो ऐसा नहीं है कि मैं आज भी अच्छा करूंगी, क्योंकि सेपर स्पोर्ट में हर मिनट हमारा मोमेंट, हमारा स्ट्रेस, हमारा वो रिदम सब कुछ चेंज होते रहता, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी, अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस टाइम आई एम विद अ टीम, यू नो मेरे साथ बहुत लोग है, लास्ट टाइम मैंने अकेले थी, बट इस बार आई हैव मेनी पीपल टू सपोर्ट मी, टू एनकरेज मी, टू मोटिवेट मी, एंड एट द सेम टाइम मुझे भी पता है कैसे करना है, कैसे करना है, सो नाउ आई होप दैट कि मैं सारी मिस्टेक्स कम करूं और अच्छा से मेरे एक्सपीरियंस को, मेरी लर्निंग्स को, मेरी स्ट्रैटेजीज को अच्छा से यूज करके मैं पहले क्वालिफाई हो जाऊं, एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड, आई एम वर्किंग रियली हार्ड, माई कोच एंड माई सेल्फ, वी हैव अ टीम, माई सपोर्ट सिस्टम, वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट गोल, आई रियली होप दैट आई फैंस इन लॉस एंजलस एंड अगेन इंडियंस विल वॉच माई गेम इन लॉस एंजलस लाइव।
1: इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन चैंपियन भी है, एशियन गेम्स भी है, तो आपको लगता है कि वहां थोड़ा सा एक और रिदम आएगी?
2: तो अभी एशियन गेम्स का पता नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो इफ वी हैव क्वालिफाइड और नॉट, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, सो यस वी विल डू आवर बेस्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन, एंड मेरे लिए एक्चुअली मैंने सर्जरी की थी अभी नवम्बर में, सो सर्जरी के बाद मेरा फर्स्ट बिग टूर्नामेंट ये है और सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो आई रियली वॉन्ट टू डू माई बेस्ट परफॉर्मेंस देयर।
1: फेंसिंग में जो भी आता है वो उनके लिए भवानी देवी जो है एक रोल मॉडल है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह तैयारी की?
2: मैं आई विल से दैट कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ आपका अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन 5 घंटा ट्रेनिंग कर रही हूँ उसकी वजह से लिए मैं क्वालिफाई या कुछ मेरा रिजल्ट अचीव कर पाऊंगी, लेकिन वो 5 घंटे आप कैसे माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रही हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप द माइंडसेट स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव, जो भी है आपका 100% देना है और हार्डवर्क कभी नहीं छोड़ना है, और यू नीड टू एंजॉय एवरीथिंग, ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस यू फेस इन योर लाइफ, इन द स्पोर्ट और इवन इन द जनरल लाइफ, एंड बस एंजॉय करो लाइफ को एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड।
1: तो अभी यहाँ इस एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिविजुअल में आप 1 अंक से हार गए कोरियाई से, उसके बाद अब टीम इवेंट भी हुआ आज, तो दोनों मिला के आप इस परफॉर्मेंस से कितने, क्योंकि सर्जरी के बाद अब पहला कंपटीशन है, तो कैसा एक रहा, सेटिस्फाई?
2: सेटिस्फाई तो नहीं हूं, लेकिन ये कि सर्जरी के बाद नो हमें डर लगता है, वो कि मैंने शोल्डर में सर्जरी किया था, तो कभी कभी डर लगता है कंपटीशन में उस स्ट्रेस की वजह से फिर से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए करके, लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि वो फील नहीं था मेरे से, मैंने पूरा मैंने यूज किया मेरा शोल्डर को जैसे मैं नॉर्मली खेलती हूँ, तो वो हमारा पहला गोल था कि मैं बिना फियर की वजह खेलूँ और पूरा खुल के खेलूँ, एंड वो गोल हमने अचीव किया। यस रिजल्ट वाइज मैंने 1 पॉइंट से हार गया, फिर भी मैंने हार ही गया, तो वो वर्क करना है, जब 14-14 होता है उस स्ट्रेस में कैसे खेलना है उसके लिए थोड़ा स्ट्रांगली मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्यूचर में भी, क्योंकि
1: एपी टीम के मुकाबले में आज भारतीय टीम राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे से पराजित हो गई, उसके बाद जो रैंकिंग के 3 मुकाबले हुए वहां वियतनाम से मुकाबले में हार मिली।

0: लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और ईरान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर 13वां स्थान हासिल किया। हमारे साथ हैं टीम के कोच मोहित जी, और क्या बताना चाहेंगे आकाशवाणी को आज की कंपटीशन के बारे में?
1: बड़ा ही अच्छा कमबैक किया था इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मैच्योर्ड फेंसर आए उनके साथ और उनके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा। पहले जो 5 बाउट तक तो उसको बराबरी था, फिर आपको पता है कि जैसे एक्सपीरियंस काउंट करता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आगे आती है तो जो ज्यादा मैच्योर्ड फेंसर है, ज्यादा टेक्निकली टेक्टिकली स्ट्रांग है, वो विन कर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यंग पूरा बैच है, 19 साल, 20 साल, 22 साल और 23 साल टोटल उम्र है इन चारों की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यंग बच्चे जो हैं ये अच्छा खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यही टीम अगर आगे भी अच्छा खेलेगी तो डेफिनेटली हाँ, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आने वाले 3 या 4 साल में हम पक्का फाइनलिस्ट होंगे, दैट इज फॉर श्योर।
0: सर, अभी विश्व चैंपियनशिप होनी है, एशियन गेम्स हैं, तो वहां इसके लिए आप समझते हैं कि अच्छा मंच मिल गया हमें, हम रैंकिंग राउंड में भी अच्छा करने में सफल हो रहे हैं?
1: डेफिनेटली, देखिए आपके सामने ही है 4-4 मैच लगाने, एक एक घंटे से ऊपर का मैच होता है और आप देखिए कि लास्ट के 2 मैच विन करने, ये पॉजिटिव अप्रोच है कि एंड्योरेंस बच्चों में है स्पेसिफिक। इसके अलावा जो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो हमें टेक्निक और टैक्टिक्स पे ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स और बीच में कॉमनवेल्थ भी है चैंपियनशिप, तो ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है। और कॉमनवेल्थ में तो मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि हम काफी सारे मेडल लेके आने वाले हैं। थैंक यू।
0: कल फेंसिंग चैंपियनशिप का अंतिम दिन है जिसमें महिला एपी और पुरुषों की फाइल टीम स्पर्धाएं होंगी। भारतीय महिला एपी खिलाड़ी प्राची ने कहा,
2: मैं एपी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिया की तरफ से, और मेरा कंपटीशन जो था इंडिविजुअल उसमें मैं 22nd रही ओवरऑल। ये बहुत एक बहुत अच्छा कंपटीशन था मेरे लिए, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया इस कंपटीशन से। कुछ गलतियां रही क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी और बेहतर कर सकती थी, पर अब मैं मुझे वो गलतियां जो हुई उनसे मैं सीखूंगी और आगे और अच्छी तरह बेहतर परफॉर्म करने की मैं कोशिश करूंगी। और जो कल हमारा टीम इवेंट है उसमें हमें भी बहुत उम्मीद है हमारी टीम से, क्योंकि हमारी टीम एक बहुत स्ट्रांग टीम मानी जा रही है इस कंपटीशन में, जो एपी टीम है वुमेन की, और कल हम खेलेंगे और होपफुली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और हम सभी, सिर्फ मैं नहीं, सभी बहुत तैयारियों में जुटे हुए हैं इस टाइम पे। और
0: आप हैं तनीक्षा?
2: हाँ, मैं तनीक्षा, मितवा, यशकीरत, हम चारों अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कल के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं कल खेलने के लिए।
0: टीम स्पर्धाओं के बारे में भारतीय कोच ज्ञानेंद्र ने टीम की तैयारियों पर कहा,
3: भारतीय तलवारबाजी के लिए एक अहम दिन है, इसमें कल फॉयल मेंस का और एपी वुमेन्स टीम का मुकाबला होना है। और जो हमारी फॉयल टीम है काफी तैयार है, जो कि आने वाले एशियन गेम्स के लिए भी तैयारी कर रही है, तो इसके लिए जो यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे शायद मुकाबला कतर या फिर कजाकिस्तान से होने वाला है। अभी तक तो ड्रॉ आए नहीं है, जिस हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी है और अच्छा है कि हम भारत को और आगे ले जाएंगे और फेंसिंग को और काफी आगे तक बढ़ाएंगे।
0: कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए नवीन कुमार शर्मा।
4: फेंसिंग के बाद अब बात करते हैं शूटिंग की, और शूटिंग की रेंज पर आपको लिए चलेंगी हमारे सहयोगी अमीषा पटेल।
5: जी बिल्कुल, अब बात करते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की, जो जर्मनी में चल रहा है, जहां भारत ने 24 मेंबर्स की एक टीम भेजी है। अगर मेडल्स की बात करें तो कल शिवा नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है, और मिक्स टीम्स की बात करें तो इस मैच में शिवा नरवाल और वंशिका चौधरी की जोड़ी ने फिर से सिल्वर मेडल जीता, जिसके साथ भारत के पास कुल 16 मेडल्स हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज हैं। और भारत ने अब मेडल स्टैंडिंग्स में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है।
4: बहुत ही शानदार जो बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय शूटर्स ने दी है वो तो अपने आप में काबिल तारीफ है। और वही काबिल तारीफ ये भी है कि भारतीय वॉलीबॉल टीम भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और इस समय अपने पूल बी के मुकाबले में आज उनका जो मुकाबला होना है वो बहरीन के साथ होना है और इससे पहले चाइनीज ताइपे को भारतीय टीम ने हरा दिया था। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि भारतीय वॉलीबॉल टीम भी अपने

0: आपने जीत रह गया है। दोस्तों ढेर सारी खेलों की खबरें, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरी सहयोगी अमीषा पटेल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। खेल खिलाड़ी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आरंभ में सुनिए अरिजीत सिंह के स्वर में ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने। फिल्म का नाम है सिटी लाइट्स।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म बर्फी से। स्वर है रेखा भारद्वाज का, गीतकार हैं सैयद कादरी एवं संगीतकार प्रीतम।

0: रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए।

0: संगठन में क्रिकेटर रवि शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुब्रमण्य सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, उसके ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रासलफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और

0: लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़क गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब और फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई गजलें।

या सुन रहे थे चितरा सिंह की आवाज में बशीर फराग गोरखपुरी और मिर्जा गालिब की लिखी हुई गजलें। आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में बशीर बद्र, मुराद लखनवी और रईस अख्तर की लिखी हुई गजलें।

ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीद अफगानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को सा कम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म एवॉर्ड

अदा किए। साफ ए पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मोती और आर माधवन और गुलोकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो अलनीनो की वजह से कमजोर मानसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट के नतज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है और फीफा आलमी कप में ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लाहिक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खिते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने उहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। साफी पी नारायण को अदब व तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कानी असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है। जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा दिया गया है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीकेकार, फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिले सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉ अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सहमाही में भारत की मजमूनी तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ है। डॉ लाहिरी ने ये बात नई दिल्ली में तिजारत पर नजर रखने वाली सहमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सहमाही के दौरान भारत की बरामदात 1

0: करें नहाने में, और अपनी जो आपके अंडरवेयर्स होती हैं चंडर, वो आप डेली या ऑल्टरनेटिव अंडर गारमेंट्स जो है उसको चेंज करते रहें, क्योंकि यही एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का अगर आपने अपने हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो।
1: जी समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत गोनोरिया एलर्जी के हवाले से कुछ जरूरी बातें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं ड्रामा करवट।

0: चलिए खाना तैयार है।
1: जरा ठहरो, मुझे एक मेहमान का इंतजार है।
0: कौन आ रही है?
1: तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, एक औरत आने वाली है।
0: औरत?
1: हाँ, जो हमारी हमसाया है।
0: हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती।
1: बोलती हो।
0: एक वैश्या है जो कुछ दिनों से साथ वाले मकान में रहती है, सारा दिन उधम मचाए रखती है। वो तो हो नहीं सकती।
1: वो क्यों नहीं हो सकती?
0: इसलिए कि वो एक बाजारी औरत है, सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं।
1: क्योंकि सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, इसलिए मैंने उसे दावत दी है, अपने यहाँ बुलाया।
0: लोग क्या कहेंगे?
1: ये कहेंगे कि मैंने गंदी औरत को अपने घर बुलाया है और उसे अपनी बीवी और लड़की के साथ बिठाकर खाना खिलाया, उससे बातें की और फिर रुख्सत कर दिया।
0: कोई मसलियत होगी इसमें?
1: मसलियत ये कि वो अपनी सलाह कर सके। मैं तुम दोनों से कई मरतबा कह चुका हूं कि इंसान की हर वक्त सलाह हो सकती है, इसलिए कि इसमें नेकी का जौहर कभी फना नहीं हो सकता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के सीने में भी किसी कोने के अंदर नूर का एक जर्रा होता है, जिसे अगर छेड़ा जाए तो उसके सियाह दिल को मुनव्वर करने का मूजिब हो सकता है। ये वेश्या जो थोड़े दिनों से हमारे पड़ोस में आई है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब है, रूह एक पाकीज़ा चीज है, उसे कोई ताकत मुलव्वस नहीं कर सकती। खराब अफाल से सिर्फ पर्दे के पीछे छुप जाती है। जितना ज्यादा इंसान बुराइयां करता है, उतना ही ज्यादा ये पर्दा मोटा होता जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका जमीर, जो रूह का दूसरा और आसान नाम है, मर जाता है। उस पर्दे को अगर आहिस्ता आहिस्ता या एकदम हटा दिया जाए तो उस इंसान का दिल और दिमाग फिर से रोशन हो सकता है।
0: क्या आप इस औरत की इस्लाह कर सकेंगे?
1: अगर एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन हो सकता है, तो एक इंसान दूसरे इंसान को नेकी का रास्ता जरूर दिखा सकता है। ये नेक काम मुझसे हो जाए तो मुझसे खुश नसीब इंसान और कौन होगा। दुआ करो कैसा ही हो।
0: फिर भी उसका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं।
1: लड़की, तुझे इस ख्याल से ही कांपना चाहिए कि तू एक इंसान से नफरत कर रही है। तुझे याद नहीं, ऐसी ही वेश्या को संसार करने वालों से हजरत ईसा ने कहा था, तुम में से जो गुनहगार नहीं वो उसे पत्थर मार सकता है। हम सब गुनहगार हैं, इसलिए हमें किसी को नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए।
0: अगर वो वाकई अच्छी हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि आया वो भी अच्छा बनना चाहती है?
2: देखेंगे।
1: कोई काम शुरू करने से पहले आदमी को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। जब से वो यहां आई है मैं सोचता रहा हूं, उठते बैठते खा

0: ना मेरी बीवी और लड़की के साथ खाओ तो वो भौचक्का सी हो गई। मैंने महसूस किया कि इस रोशनी में जो उसके अंदर दबी पड़ी है एक इरतआश सा पैदा हुआ। उसने बड़ी कोशिश से अपने लहजे में शराफत पैदा की और जवाब दिया, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं हाजिर हो जाऊंगी।
1: प्रीत गई धन धर्म गया।
2: अब वो हाजिर हो चुकी। ये शोर सुना आपने?
0: सुना, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ।
2: मेरा कहा मानिए और उसकी इसलाह का ख्याल छोड़िए और मालिक मकान से मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं सुनती हूँ कि मालिक मकान को इस बात की कुछ खबर ही नहीं कि उसका मकान एक बाजारी औरत ने किराए पर लिया है।
0: यहाँ से निकाल दी जाएगी तो कहीं और जा रहेगी।
2: कम से कम यहाँ की खिलाफत तो दूर होगी।
0: अपने घर का कूड़ा किसी और घर के आगे ढेर कर देना अकलमंद नहीं। क्यों ना इस गिलाजत को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश की जाए।
2: आपने कोशिश की थी मगर वो नहीं आई।
0: मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा।

0: वाह वाह वाह, क्या कहने संदीप भाई, क्या
1: क्या है जो यार नहीं है? शराब, ठंडा सोडा, नए नए फिल्मों के रिकॉर्ड, संदीप भाई का कोटा, सही अजायब घर है, अजायब
0: अजायब घर में शराब, ठंडा सोडा, नई फिल्मों के रिकॉर्ड का
1: है?
0: जो बात करेगा साले अजीब ही करेगा।
2: मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़िया घर जरूर है।
0: रंग रंग के जानवर आते
1: हैं ठीक नहीं, हमें जानवर बना दिया
3: है?
1: क्या हम जानवर?
2: चिड़िया घर में शेर भी तो होते हैं खास।
1: शेर बात करना तो कोई सुंदरी भाई से सीख।
2: अजी कहाँ बातें करना आती हैं? आज एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी हो गई।
0: क्या करने आए थे मौलाना?
2: कहते थे आओ रात का खाना हमारे घर खाओ।
1: आदमी मेहमान नवाज थे।
0: जो बात करोगे उल्टी, गधे चुगत कहीं के, मेहमान तो वो खुद था सुंदरी बाई का। हाँ तो सुंदरी बाई फिर क्या हुआ, पेट भरा तुमने उसका?
2: नहीं जी, वो सचमुच दावत ही देने आया था, ये सामने मकान है उनका।
4: क्या कहती हो सुंदरी बाई? अरे वो तो बहुत बड़े वो हैं।
1: क्या मतलब?
4: अरे वही यानी बड़े नेक आदमी हैं। कैसे आ गए यहाँ?
2: बात ये है कि मेरा आना

0: जाना यहाँ लोगों को बहुत नागवार गुजरा है। मेरे घोड़े चाहते हैं किसी न किसी तरह मुझे इस मकान से धक्का मिल जाए। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, नाक में दम कर दिया है पड़ोस के लौंडों ने, कोठों पर चढ़ चढ़ के कूड़ा करकट फेंकते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये सब हड्डियां आज ही फेंकी गई हैं। अब कल सवेरे भंगन आएगी तो उठवाऊंगी। मेरा ख्याल है कि वो भी इसीलिए आया था, मरदूत यूं तो खाने की दावत दे गया था। जाती तो महीन महीन चिट्ठियां लेकर या तो नसीहतें करता या फसीहतें।
1: अरे हटाओ साले। अच्छा हुआ जो तुम ना गई, अगर चली जाती तो बंदा जंगल की रह लेता। अमिया, सुंदरी का दम बहुत गनीमत है।
2: क्या शक है,
0: आग लगे सुंदरी और उसके दम को, कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़ मारी को। दर बदर की ठोकरें लिखी है नसीब में, देख लेना यहाँ से भी चंद दिनों के बाद ये लोग निकाल बाहर करेंगे। अब मैं क्या कहूँ इनसे, किसी से मिलती नहीं, किसी से कुछ लेती नहीं देती नहीं, फिर जाने क्यों मुझे निगोड़ मारी की जान के पीछे पड़े रहते हैं। इधर तुम लोगों की खुशामद करो, उधर उनके आगे हाथ जोड़ो। 2 महीने का किराया पूरे 80 रुपए पेश की मुंशी ठोक बचा कर ले गया था, फिर इस मकान का दरवाजा खोला गया था। कुछ भी हो, अब मैंने भी तहैया कर लिया है, मर जाऊं पर इस मकान से कभी नहीं निकलूं।
2: ये कौन,
0: होटल का छोकरा होगा।
1: खाली बोतल लेने आया होगा।
0: कौन हो तुम?
3: मैंने, मेरी बीवी ने और मेरी लड़की ने अभी तक खाना नहीं खाया, हम तुम्हारे मुंतजर थे।
0: मुझे फुर्सत नहीं है, जाओ।
3: कितनी देर में फुर्सत हो जाएगी, हम 1-2 घंटे और इंतजार कर सकते हैं।
0: तुम देखते नहीं यहाँ कौन बैठे?
3: देख रहा हूँ, मेरे भाई हैं, ये भी साथ चले।
0: अपने इन भाइयों को साथ ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
3: क्यों?
0: बस मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम हिंदी की चिंदी क्या करते हो जी?
3: माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि तुम अपना वादा पूरा करो, हम 2 घंटे और तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं।
0: तुम चाहते क्या हो मुझसे, दफान क्यों नहीं होता यहाँ से? ये जिन्हें तुम अपना कहते हो अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी हैं, सुना? ये मेरे ग्राहक हैं, मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ, समझे? मैं एक बाजारी औरत हूँ, एक वैश्या। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं किसी के घर नहीं जाया करती, मेरी सजी सजाई दुकान मौजूद है, लोग खुद चलकर यहाँ आते हैं। जो माल बेचती हूँ तुम्हें खरीदना हो तो आओ, अपने भाइयों के साथ बैठ जाओ, 1 बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ।
4: सुंदरी
0: खामोश रहो, तंग कर रखा है इन शरीफ आदमियों ने मुझे, आज तो मुझे जी हल्का कर लेने दो। दिन और रात के खाने पर इनके यहाँ जो हड्डियाँ जमा होती हैं मेरे घर के सहन में फेंक दी जाती हैं, जो कूड़ा इकट्ठा होता है इधर लुड़का दिया जाता है, इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। अब मुझे दावत दी जा रही है, क्यों, क्या जहर देने का इरादा है?
3: मुझे अफसोस है बाद लोगों की जहालत के बायस तुम्हें दुख पहुंचा। जो कूड़ा तुम्हारे घर फेंका जाता है, कहो तो मैं हर रोज झाड़ू देकर साफ कर दूं।
0: मुझे इसकी जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से दफन हो जाओ, जाओ।
4: सुंदरी
0: सुनते हो कि नहीं, मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: सुंदरी खामोश हो जाओ,
5: आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए, चढ़ गई है इसके दिमाग को।
0: चढ़ गई है मेरे दिमाग को, चलो ऐसा ही सही। अब जाओ, टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देखते हो, क्या और बेइज्जती कराना चाहते हो?
3: मेरी तुमने कोई बेइज्जती नहीं की, अब मैं फिर आऊंगा।
0: इस वक्त तो जाओ।
4: सुंदरी ये तुमने क्या किया, बस दफा तुम हद कर देती हो।
0: बकवास मत करो।
6: नहीं छूटे रामा।

0: मालूम होता है इन्हें नाकामी हुई है।
1: रिकॉर्ड जो बजना शुरू हुआ है इससे यही पता चलता है।
0: अपना तब यही रिकॉर्ड बजाया जाता है। मैं तो सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। कम वक्त टूट भी नहीं चुकता।
1: न कभी ये टूटेगा न कभी ये बेसुआ यहाँ से दफन होगी।
0: जाने किस बात पर इतनी हंसी आती है इन्हें।
1: मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे बाप का।
2: मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। वो तो बहुत शरीफ आदमी है।
1: कौन?
2: वही जो उस औरत के पास बैठे। मैं गया तो उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की।
1: आपके साथ वो नहीं आई?
2: अपने मेहमानों को छोड़कर कैसे चली आती?
0: जरूर उसने इनकार किया होगा।
2: आदमी बार दफा जल्दी में गलत फैसला कर लेता है, बाद में उसको बदल भी देता है।
0: चलिए खाना ठंडा हो रहा है।
2: मैं नहीं खाऊंगा, तुम दोनों खा लो।
0: उस औरत ने तो आपका खाना पीना और सोना हराम कर दिया है। लानत भेजिए।
2: लड़की, वो इंसान जो दूसरे इंसान पर लानत भेजे, इंसान कहलाने का कभी मुस्तहक नहीं हो सकता। वो बेचारी पहले ही एक लानत में गिरफ्तार है, अब उस पर तुम और लानत भेजना चाहते हो। दुनिया में लानतों की फरावानी इसी वजह से तो है। जाओ खाना खाओ और आराम करो।
0: ये क्या हुआ? शरीफ आदमी अपनी शराफत दिखा रहे हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा फजीता मालूम होता है।
2: मैं जाके देखता हूँ।
0: नहीं आप ना जाओ। शराबी है, नशे में कोई चीज ही नहीं मारेंगे। ये झगड़ा तो मालूम होता है अपने पड़ोसियों से कर रही है।
2: वो सताते जो रहते हैं, मैं उनको समझाता हूँ।
3: ये क्या तमाशा बना रखा है तुम अशराफों ने? एक पल के लिए मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? बताओ, बताते क्यों नहीं? बड़े भोले बड़े शरीफ बनते हो, पर ये सारे कांटे तुम्हारे ही तो बोए हुए हैं। आए थे मुझे खाने की दावत देने, 2 घंटे मेरा इंतजार करने को तैयार थे, पर उन हरामी लौंडों को पत्थर देकर भेजने में तुमने 1 मिनट देर न की। देखते हो मेरा माथा? देखते हो ये लहू? डूब मरना चाहिए तुम्हारी शराफत को।
4: सुंदरी अब चलो यहाँ से।
3: तुम डरते हो? इस बेईमान और धोखेबाज से डरते हो? सामने खड़ी हूँ ना, मुंह नोच डालोगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाले। रंडी से उलझने का मजा ना चखा दो तो मेरा नाम सुंदरी नहीं। नाक में दम आ गया है मेरा। हर रोज एक नया तरीका मुझे छेड़ने का निकाला जाता है। हर रोज मेरे घर में गंदगी फेंकी जाती है। सुन लो, अगर फिर कभी मुझे यूं सताया गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारी नेक बीवियों की जिंदगी दूभर कर दूंगी।
2: गुस्सा ठंडा हो गया? अब मुझे बताओ बात क्या?
3: मेरा गुस्सा उस वक्त ठंडा होगा जब तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। थू
2: सुंदरी।
3: वो नहीं सुना? अब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है
2: तो बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ।

कभी कभी मैं बिल्कुल आपे में नहीं रहती। मेरा दिल पत्थर का तो नहीं है, और ये जो चोट मेरे माथे पर लगी है, और ये लहू, मैं इसका बदला ना लेती। चूकी तो फेंकी थी, पर भाला तो नहीं मार दिया था। बैठ जाओ और खाना खा के जाओ, जैसे मुझे खाना

0: का कुछ मिलता नहीं, बेकार है नू।
1: काजी गई का
0: मर्द मर्द धोखेबाज।

0: आज कई रोज से रिकॉर्ड नहीं बजा, शोर वोर भी सुनाई नहीं दिया।
1: पता नहीं क्या बात है, तीन चार दफा उसके यहाँ गया हूँ, अंदर तो दरवाजा बंद होता है, दस्तक देता हूँ पर कोई बोलता ही नहीं।
0: शायद बीमार हो।
1: मैंने भी यही सोचा था और इसीलिए गया भी था, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला।
0: उसने आपसे उस रोज जो सुलूक किया।
1: बोल जाओ बोल जाओ, उसका ऐसी बातें कभी याद नहीं रखनी चाहिए।
0: क्या आपका अभी यही ख्याल है कि उसे सुधारा जा सकता है?
1: कतई तौर पर।
0: कैसे?
1: अजरा खुद बहुत कोई रास्ता पैदा कर देगी।
0: बेटी देखो तो कौन है।
1: तो मैडम मैं देखता हूँ। आओ आओ आ जाओ।
0: मैं
1: कई बार तुम्हारे मकान पर गया मगर शायद तुम्हारी तबीयत तमील थी।
0: मुझे माफ कर दीजिए।
1: किस बात की माफ मांगते हो? आओ बैठो। तुमने कोई बात ऐसी नहीं की जिस तुम्हें जरंग पहुंचा।
0: मैंने उस रोज बहुत बड़ा पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए।
1: अरे दीदी ये क्या, तुम ठीक उठो, मुझे गुनहगार न करो।
0: आप भी एक बार कह दीजिए कि मैंने माफ कर दिया।
1: लो भाई कह दिया, उठो अब।
0: इतने रोज मुझे नींद नहीं आई, बस सोचती रही कि क्या ख्याल मुझे नहीं आए। कई बार सोचा कुछ खाके मर जाओ।
1: खुद को ही कमजोर आदमी करते हैं।
0: मैं तो जरूर कर लेती अगर मुझमें हिम्मत होती।
1: ये हिम्मत ही तो कमजोरी का दूसरा नाम है।
0: मुझे माफ कर दिया है ना आपने?
1: हाँ कर दिया। आओ बैठो।
0: मैं बस माफी मांगने और ये कहने आई थी कि मैं कल यहाँ से चली जाऊँ।
1: सुनो तो सुनो, चले गए। खैर
0: क्या ये वही आती?
1: वही, बिल्कुल वही। अगर तुमने इंकलाब देखा चंद दिनों में क्या से क्या हो गई है।
0: आज चेहरे पर पाउडर सुर्खी भी नहीं थी
1: मगर यहाँ से जा क्यों रही है?
0: क्या करेगी यहाँ रहकर? शायद कहीं बाहर जाकर शरीफाना जिंदगी बसर करे।
1: शरीफाना जिंदगी यहाँ रहकर भी बसर कर सकती है, उसे उसको समझाना चाहिए। कहाँ दर बदर मारी मारी फिरेगी, उसको ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए।
0: अब आप उसी के पास जा रहे हैं?
1: हाँ।
0: कौन है?
1: मैं। अंदर आ सकता हूँ?
0: आइए आइए।
1: तुमने तो सचमुच जाने की तैयारी कर ली?
0: जी हाँ, कल चली जाऊंगी।
1: कहाँ जाओगी?
0: चली जाऊंगी कहीं, इस जिंदगी से अब नफरत हो गई है।
1: इतनी जल्दी?
0: आदमी को बदलते देर क्या लगती है।
1: तुम जाओ। नहीं नहीं रहो।
0: जी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
1: मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ?
0: क्यों नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, शौक से बैठिए।
1: नहीं, मेरा आना तुम्हें नागवार गुजरा?
0: जी नहीं, नागवार क्यों गुजरने लगा, आप तशरीफ रखिए।
1: तुम बहुत अच्छी हो।
0: जो आप अच्छे होते हैं वो घरों को भी अच्छा ही समझते हैं।
1: तुमने क्या बनाई है? ये थी तो दूर हो गई, अब आराम से जिंदगी बसर करो। यहां से जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें कोई नहीं सताएगा, मैं रमेश का वादा करता हूँ।
0: आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन यहाँ मेरा गुजर कैसे होगा? किसी के घर में आप मुझे नौकर करा दें, लेकिन मुझे नौकर कौन रखेगा?
1: मेरे पास बैठो, बैठ रहो
0: जी।
1: तुम नौकर बनना चाहते हो? किसकी?
0: कोई भी रख ले।
1: और क्यों, कोई खुद तुम्हारा नौकर बनना चाहे? मेरा मतलब है
0: क्या मतलब है आपका?
1: देखो समझिए, अब तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, बड़े आराम से जिंदगी बसर करोगे। चंद ही दिनों में तुम्हें बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा और अब तुम्हारी जिंदगी अब एक नई करवट बदलेगी। समझे, तुम्हें जानते हैं कि तुम कितने सुंदर, तुम्हें बड़े बड़े आदमियों की सोबत में देखकर मुझे कितना दुख होता था, लेकिन अब तुम खामोश तो बचो, कुछ बोलो, कुछ कहो।
0: चलो जाइए यहाँ से।
1: लेकिन मैं
0: चले जाऊंगी यहाँ से।
1: अच्छा तो मैं कल आऊंगा, तुम सोच लेना।
0: जा।

0: मिला है?
1: हाँ मिला है, वो तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आप तो तुम्हें सुख गई?
1: हाँ रुकी गई, बहुत देर तक समझाना पड़ा।
0: क्या कहती थी?
1: कुछ नहीं, बेचारी बहुत परेशान थी। आदमी परेशान हो ही जाता है इस हालत में। बस तुम एक डगर पर चलते चलते एकदम नया रास्ता इख्तियार करते वक्त देखो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है।
0: तो आप नहीं जाएगी?
1: कहाँ जाएगी, इस जगह और दूसरी जगह में पाती क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने उसको समझाया कि तुम्हें नई करवट लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार बन जाए, तुम्हारे सब दिलचस्प दूर हो जाए।
0: बहुत खुशी की बात होगी अगर वो सब।
2: सामने भी आप सुन रहे थे ड्रामा करवट, जिसको तहरीर किया था सादत हसन मंटो ने। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप अपनी फरमाइशें हमें लिखकर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस esd@gmail.com के जरिए। हाजिर है इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

करम रुबीना वसीम नाल मंजिल महसूल सीतामढ़ी से सुनने के ख्वाहिश बनते मैं सरगड़े विजय सरगड़े विलिंद सरगड़े वरुजोलका से सुनने के ख्वाहिश बनते और सीमा गांधी मनोहर लाल गांधी टुकटुक गांधी गाजियाबाद से सुनने के ख्वाहिश बनते सुनना चाहता मुडाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर सुरलकर और आरती सुरलकर ने और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा सुनने के ख्वाहिश बनते छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा सुनने के ख्वाहिश बनते और सुनना चाहता कैलाश फूलमाली दीपक फूलमाली और समर फूलमाली ने खंडवा से और फातिमा कॉलोनी रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नादिर नासिर साजिश शाही सुनने के ख्वाहिशमंद थे और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश और सुनना चाहते हैं यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे ऊंचेगांव नांदेड़ से देवनंद शिंदे पाटिल सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा मजनू कटेला दिल्ली से गजन नीले नदी पेले नीलेश येले सिद्धार्थपुर दरियापुर बावली से सुनना चाहते हैं और रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल हरियाणा से बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान और रमणीत निशु मुक्सर पंजाब से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

कहानी अभी आप सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म से, ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी राहुल देव वर्मन ने और बोल थे आनंद बख्शी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश हीर रांझा फिल्म से, जिसको सुनना चाह रहा है उत्तम कुमार उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने। हीना साबरी, ऐस अली इमाम और मोहम्मद हसन इमाम गिरडी झारखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़ उदयपुर से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दारा पंडित, संजय शर्मा हरियाणा से और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री, सनावत मध्य प्रदेश से। मुल्लानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और अलीगढ़ अव्वली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी सुनना चाहते हैं। मेराज जहां, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राई सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से और सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान और कल्पित चौहान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, प्रियंका काल पांडे महाराष्ट्र से। भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन और शबनम अनवार गंजुंडवारा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा चंडीगढ़ से और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं रविन्द्र मोहनदास, हर्ष देवी, वर्षा सुमन बिहार से और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक सुनना चाहते हैं डांडा से। शाहिद अली, इरफत फारूकी, इर्जा अली मुंबई से, चेन्नई से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं निजामा तेलंगाना से, मोहम्मद आसिफ इकबाल, रुबेदी मंठाल, शब्बीर बनहट्टी। तंगवानी से मोहम्मद मीर हसन निंदवानी, यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हुसैन निंदवानी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सादुल शेर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ सुनना चाहते हैं। डोरा विहार से डॉक्टर वलीद अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी सुनने चाहते हैं और शरफुद्दीन अंसारी बक्सर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फातिमा खातून के साथ। सैयद मसरूर, शायना हसन और नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई अमरावती सुनना चाहते हैं और रमन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने सुनने के ख्वाहिशमंद हैं इनके साथ ही।

हमें अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा फिल्म हीर रांझा से, जिसकी पर बनाई थी मदन मोहन ने और बोल थे कैफी आजमी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, जिसको सुनना चाहा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी ने बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला चुगनट्टी से, और मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, कीर्तन ठाकुर, किरण गुप्ता सुनने की ख्वाहिशमंद है। सुनना चाहते हैं अरुण कुमार, मालविया दर्द, सरिता मालविया, बलरवी वाराणसी से, सबीहा खानम, फरीदा शबनम और रईसा सुनना चाहते हैं उदयपुर से, और राजधानी रायपुर से सुनना चाहते हैं कमला सिंह और उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो शेख, करिश्मा शेख लातूर से सुनना चाहते हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन और जमालुद्दीन सुनना चाहते हैं रामपुर से, रमेश कुमार यादव, माया यादव, कमल यादव सुनना चाहते हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से, और अहमद भाई फुलवाले, सदफ आरजू फुलवाले सुनने के ख्वाहिशमंद हैं करजत मुंबई से, और बेगूसराय से शमीम अहमद, इमरान अहमद सुनना चाहते हैं।

सामीन अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से नगमा आशा भोसले की आवाज में, जिसकी तर्जनाई थी जवीने और बोल थे साहिल लुधियानवी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाहे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने टेगोर गार्डन नई दिल्ली से, और सुनना चाहते हैं पश्चिम चौक गंजवाड़ा से मुनव्वर फरीजादा, नसरीन मिर्जा और अरबाब शहबाज ने। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा राजस्थान सुनना चाहते हैं श्रीगंगानगर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर और प्रियांशी। शाहरुख अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी बरेली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और फजल पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं बेगम समीरा खान, मोहम्मद अजीम।

और भाई कामरान खान कुरावली से, और एमवी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना और आरव खुराना सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह ठाकुरवा लोहगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। नागपुर से विठल यादव अनुसूचित जाति सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही रेलवे रोड गंजवाड़ा से। अनंत भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत मस्तानपुरा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं बिलवा की वैसे से वर्षा चावड़ा।

0: अभी भी आप सुन रहे थे महुआ फिल्म से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। शब के 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। ये इसी दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बर्रे सगीर की खबरों के साथ मैं तौहीद हक्कानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीर में पद्म अवार्ड्स अदा किए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोलिया रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की है। लंदन में एफआईएच प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मुकाबले में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया और फीफा आलमी कप में ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लाहिक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तामीर में ख्वातीन के बढ़ते रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा ख्वातीन अफसर हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीर में पद्म अवार्ड्स अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब व तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मोमुथी और प्लेबैक गुलकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बाद अजमर पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल है। अदाकार सतीश शाह को बाद अजमर पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बेगसेट सेग बातमुख और सनत और कानकनी के वजीर गैंगोर दाम दिन्याम के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا. وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے کارکنان کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا. وزیر خارجہ نے منگولیا کے وزیر اور کابینہ کے چیف سیکرٹری باٹو مور انک بیار سے بھی ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے کانکنی، توانائی، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں نئے امکانات سمیت دونوں ممالک کے دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا. وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. نئی دلی میں نامہ‌نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج ابھی چل رہا ہے.

0: नहीं देता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका अब नए हुर्मुज में बहरी जहाजों की आमद और रफ्त पर आयात पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क्यादत ने जारी सिफारती मुजाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरे कार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाजे किया कि ईरान ने उन मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी कबूल नहीं की, जो पहले अमरीकी और इसराइली फौजी कार्रवाइयों से मुतासिर हुई थी। लंदन में FIH प्रो हॉकी लीग के इफ्तिताही मुकाबले में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला यह मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत आज मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में ह्यूस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से हो रहा है, वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बॉस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरेंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सोल में जारी ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा और सनत और कारकन के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की है। और फीफा आलमी कप में ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से जारी है। इसी के साथ बरसगीर की खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिर इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में।

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغمے، پروگرام تامل ارشاد کے تحت۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام سرخیوں میں۔
1: कार्यक्रम सुर्खियों में इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और

0: के सफर पर एक नजर डालते हैं।
1: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता, देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरयुक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
0: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी ये सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मैलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
2: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव इमरान आर्मी ही मेरा जन्म है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे कातीपारा में है और बालखाल में हमने माँ के साथ रहते

0: स्वयं किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। 8-9 साल की और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घूमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
0: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे है कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनको समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है हम उनके पास जाना है। उनके साथ ही घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद ही बहुत कठिनाई भी आया है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
2: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
3: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए सब कुछ मिल रहा है, वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, एक भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
2: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
3: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
2: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
3: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एजुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेकर आप एजुकेशन कितना टूट जाएगी, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए।
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
4: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियाँ शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
5: गोंडवाना में जाना आना तो काफी कठिन था उस समय, हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियाँ थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुजमाण में गए थे।
4: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुजमाण और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
6: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
1: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
1: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
2: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
1: इस बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
2: जो हमारी परंपरागत किस्में थी, अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थी और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
1: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
2: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
0: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 आईसीसी खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
3: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद निसार हुसैन खान की आवाज में राग जयजयवंती में ख्याल।

साझेदारों से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जोन की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक की अहमियत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवभव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वह शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। कल नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तामीर में ख्वातीन के बढ़ते हुए रोल को यह कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा ख्वातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वफ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब व तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममोथी और प्लेबैक गुलकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शेबू सोरेन को बाद अजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बाद अजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीरत ख़ारजा ने कल कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आमनाए हुरमुज से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परजा मर्दार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बातसेत सेग बातमुनक और सनत और कानकनी के वजीर गोंगोर दामिन दिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबे में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का भी जायजा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने प्रोजेक्ट के मुकाम पर भारत और मंगोलिया के कारकुनान के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने मंगोलिया के वजीर और काबीना के चीफ सेक्रेटरी बातुमर एंखयार से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों धर्मों ने कानकनी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसायल के शोबों में नए इम्कान समेत दोनों ममालिक के दोतरफा तआवुन पर तबादले ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल हफीज से खबर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता किये। वजारते खारजा ने कल कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कल मंगोलिया के वजीर खारजा और सनत व कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जर्मनी के शहर जोल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए कल का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त आलमी खत्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक की अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवभावा पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वह शहरियों की हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। कल नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों

0: उस समय कुलियाई तंसीबात पर बैन अल्क्वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी कबूल नहीं की जो पहले अमरीकी और इसराइली फौजी कार्रवाइयों से मुतासिर हुई थी। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ने कल कहा कि पिछली छमाही में भारत की मजमू तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ है। डॉक्टर लाहिड़ी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली छमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। जर्मनी के शहर जून में जारी ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए कल का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवान अरवाल ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता जबकि युग प्रताप सिंह राठौर ने इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता जिससे भारत को एक ही मुकाबले में 2 तमगे हासिल हुए। भारत ने मर्दों के 10 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में परम अवार्ड्स अदा किए। वजारत खारजा ने कल कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल मंगोलिया के वजीर खारजा और सनत व कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जर्मनी के शहर जूल में जारी ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए कल का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का मेरा चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है और फिर ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और फिर बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

0: सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी, तब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

अभी आपने लता मंगेशकर सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। आइए अब सुनते हैं गीत मेरे कार्यक्रम में, अगला गीत।

0: भी बेबसीर ने मारा।
1: अलग अलग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना और आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मुहूर्त के साथ आकाशवाणी दिल्ली का TIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है और बहुत कहीं के गीत संगीत की दुनिया में संगीत जो है गीत जो है एक साथ देता है, अकेलेपन को दूर करता है, एक उत्साह बनता है, एक प्रेरणा देता है, साथ ही साथ उस खालीपन को दूर करता है जो अकेले होने के साथ साथ पनपता है। संगीत एक साथी है, एक चिकित्सा है, एक सुकून है और इसी सुकून को हम सुनाना चाहते हैं आपको गीत सुनहरे कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने लुटा है फिल्म से गीत सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। फिल्म थे लुटेरे, गीत संगीत आनंद मिलन का था। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजिया सुल्तान से बेला सुलेखा की आवाज में।

0: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2 बजने को भी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, उसके ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, लगातार फिल्मी गाने। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दो जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: आकाशवाणी का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है, उसके प्रोग्राम में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, उससे ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे

और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों और गीतों के कार्यक्रम में ये दो गजलें भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: उम्मीद ऑप्टिमिज्म आशा भूपेंदा के हाथ से कभी नहीं छूटती, न लोकगीतों में जो वो गाते हैं, न नज्मों से जो वो लिखते हैं और कंपोज करते हैं। यहां तक कि तन्हाई में भी वो अकेला महसूस नहीं करते, उनका साया उनके साथ रहता है, उम्मीद की जोत जलाए रखता है और वो ऊंची आवाज से कहते हैं।

फिर कोशिश की थी, इसलिए क्या अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढने तलाश करें और सुनें।

मोहतरम श्रोताओं, गजल गायकी में भूपेन हजारिका साहब की अदाई ही कुछ अलग ही थी। ऐसे ही एक और गजल गायक थे जिनके गायक बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो थे भूपेंद्र। जी हाँ, हम आपको अभी अब सुनवाने वाले हैं भूपेंद्र साहब की ये दो प्यारी सी गजलें।

शब्दों जिस प्रकार भूपेंद्र और भूपेन हजारिका साहब ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था, ठीक वैसे ही चित्रा सिंह ने भी गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। और सबसे अहम बात यह थी कि वो मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी की पत्नी थी। आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये प्यारी सी गजल।

इसी के साथ में श्रोताओं गजलों और गीतों कार्यक्रम के अंत में, और ये सुनते ही ये दो गजलें पंकज उधास साहब की आवाज में।

0: सपोर्ट हो रहे हैं। यार लाइव न्यूज 24/7 समय हुआ है, 4:15 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

के कार्यकालीन पांचवा कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं रामपुरम पी स्वामीनाथन और सांची द्वारा प्रस्तुत ज्ञान संबंधर की रचना।

श्याम राजा वाडियार की रचना सुनी। सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और लीला राम गोपाल का है।

0: साथी भक्ति संगीत का प्रातकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं KIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 24 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी सुन सकेंगे। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। छह बजकर 10 मिनट पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 96। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे और 7:30 पर गीतों भरे कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं। सुबह 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों समाचार प्रभात का और 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज सुन सकेंगे। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप 8:45 पर सुन सकते हैं और 9:15 पर समय होगा साइंस मैगजीन का। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह को 5

0: सुबह के 5 बजने को है और ये सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: दुनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां स्वासा नाल निवाही ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਜੇ ਮਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ।